जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई हैं, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया। बाबा जी ने सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ। कैलाश से निकल ही रहे थे कि इतने में ही पार्वती जी ने आवाज दिया, अरे अजी कहाँ जा रहे हो? माताओं बहनों का ये थोड़ा सा स्वभाव होता है, जब पतिदेव किसी काम से बाहर निकले ना तो भले बात नहीं करेंगे, लेकिन जब निकलने ही वाले होंगे तब जरूर कहेंगे, अजी जा रहे हो, अच्छा आते टाइम 2 किलो आलू ले आना। तो चलते टाइम मैया टोकती जरूर है। तो भोलेनाथ जी बोले, कहीं नहीं, वो क्या है ना, लाला का जन्म हुआ है नंद महल, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोले, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो? रूप देखा अपना, कोई घुसने नहीं देगा? नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है, आपको मालूम है वहां कोई घुस नहीं सकता बिना आज्ञा को। ऐसे रूप से आपको कोई घुसने देगा वो तो भला हो, जो ब्याह पे आप ऐसे आए हो, मेरे माता पिता ने आपको ऐसे ही ब्याह दिया। क्योंकि भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी है, ब्याह में देवताओं ने खूब काम आ रहा है, थोड़ा आज तो थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज कर लीजिए। ऐसे कैसे कर लेंगे, किसी को अपनी छोरी देनी हो तो ऐसे ही दो जैसे हम हैं, हम किसी के लिए नहीं बदलने वाले। वही सांप सब पूरे गले में लटकाए, बोले महाराज कम से कम घोड़े पे तो बैठ जाओ, और कुछ नहीं तो कम से कम घोड़े पे बैठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहते, हमको घोड़े वोड़े की जरूरत नहीं, हमारा नंदी है, यही हमारा साथी और यही अंत तक साथ देगा, हम तो इसी पे बैठ के जाएंगे। नंदी पे बैठ गए, और नंदी पे भी बैठे उल्टा मुंह करके, इधर की तरफ मुंह करके, और बारात लेके जा रहे। देवताओं ने सोचा कि अजीब, ये तो शंभू हैं, इनको तो ना सम्मान से मतलब ना अपमान से, लेकिन अपमान तो हमारा होगा कि देखो देवता किसकी बारात में आए। इसलिए देवताओं ने क्या किया, बोले ये पीछे आते रहेंगे, हम सब पहले पहुंच जाते, और दूल्हा को छोड़ के ही सारी बारात आगे बढ़ गई। बाबा भोलेनाथ ने देखा ये तो छोड़ के चले गए हमको, अब हमारी बारात का क्या होगा? भोलेनाथ जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास बरातियों की कमी नहीं। उठाया डमरू और एक बार बजाया, डमरू बजाते ही दुनिया में जितने शमशान के भूत प्रेत हैं सब बाबा भोलेनाथ के सामने प्रकट हो गए। बोले कहिए महाराज, बोले कहिए नहीं, तैयार हो जाइए, बरात में चलना है। तो बोले महाराज हम तो तैयार हैं एकदम। और कैसे तैयार है? कोई है किसी का मुंह ही नहीं है, कई है किसी के 4-4 हाथ हैं, किसी के 10-10 पांव हैं, ऐसी अद्भुत बारात बाबा भोलेनाथ चल पड़ी। अब जैसे पहुंचे, बारात पहुंची हिमालय राजा के घर, तो सारी सखियां और सारी माताएं बाहर खड़ी थी आरती थाल लेके, बोले बारात आ रही है, दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले बारातियों की लाइन में चल रहे इंद्र देवता, लगा अरे वाह वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर दामाद मिला है, इसका रूप तो देखो। देवता बोले नहीं जी नहीं, ये दामाद जी नहीं, ये दामाद जी तो पीछे आ रहे हैं, ये तो दामाद जी के दास हैं। सखिया बोली, जब दास इतना सुंदर सौंदर्यवान है तो मालिक कितना होगा? तो बोले चिंता मत करो, आ ही रहे, देख ही लेना आप, वो भी बस पीछे ही पीछे बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर आया कामदेव, बड़े बड़े सौंदर्य को पछाड़ दे ऐसा कामदेव। फिर आरती की थाली लेके खड़ी हो गई मैना जी कि दामाद जी आ गए। दामे बोले ये भी नहीं है दामाद जी, ये तो बस उनके यहाँ थोड़ा बहुत कोई झाड़ू पोछा का काम कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ। अच्छा अब तो बस
बस आ जाए दामाद जी, कैसे भी एक बार झलक देख लें कैसे दामाद जी। नारद जी ने ऐसा कौन सा अद्भुत दामाद बता दिया हमें? नारद जी ने ही विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब देवताओं की बारात खत्म हुई और भोलेनाथ जी की बारात हुई चालू। डम डम डम डम करते करते सारे पहुंचे। बोले दामाद जी कहाँ है? बोले दामाद जी वो देखो नंदी पे उल्टे बैठे। दामाद जी से कही उतरे तो सही। दामाद जी उतरे और उतर के सासू जी के सामने आए और जैसे मैना ने देखा कुछ बोल नहीं पाई और बस आरती की थाली हाथ से छूट गई और वहीं की वहीं बेहोश हो गई। ये नारद ने क्या? अब भोलेनाथ जी झांक के देख रहे हैं, साइड वाले से पूछते हैं माता जी कौन है? अरे माता जी नहीं, आपकी सासू जी है। बाबा बोले सासू कौन सा पदार्थ होता है? ले बाबा पूछो मत, बड़ा अद्भुत पदार्थ होता है, आपको इन्हीं से लेना देना है, आगे यही अपनी छोड़ी देंगे। अपने ब्याह में ये नहीं बदले। पार्वती जी कह रही हैं आज जब मिलने जा रहे हो ठाकुर जी से तो आज तो कम से कम अपना रूप बदलो। बाबा को लगा कि बात तो ठीक कह रही है पार्वती, क्या पता कोई घुसने दे नहीं घुसने दे। बाबा ने तुरंत कपड़े बदले, धोती पहनी, पगड़ी बांधी, गले में मोतियों की माला पहनी। चलने ही वाले थे कि तभी अपने गले से नाग उतार रहे थे, तभी एक नाग फुसफुसा के हाथ जोड़ करके कहता बाबा जी एक प्रार्थना है, कहूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? बाबा जी बोले हाँ बिल्कुल कहिए, क्यों नहीं। ए बाबा जी छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन देखो हमने एक बात सुनी है संतों के मुख से कि जब भगवान के सामने जाओ ना भगवान का दर्शन करने तो दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही जाना चाहिए, और हो कुछ और बन के कुछ और जाओगे तुम्हारा आज उससे तो कोई लाभ नहीं है। बाबा भोलेनाथ बोले वाह मेरे बेटे, ये तू ही मेरा सच्चा साथी और मैं तुझे ही छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकता हूँ? बोले बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो पार्वती की बातों में फंस गया, तुरंत अपने वो कपड़े उतारे और वही भस्म लगा के मुंडों की माला पहन के और बाबा एकदम तैयार, अब तो यही रूप में जाएंगे, दर्शन करा दे तो करा दे, नहीं कराए तो वो जाने। और लेके अपना त्रिशूल बाबा भोलेनाथ आ गए मैया के घर और आकर के जोर जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन अलख निरंजन, अरियो मैया दरवाजा खोल दरवाजा खोल। मैया को लगा कोई द्वार पर साधु आए, गोपी को कहा दासी को कारी जरा जइयो देखियो कौन बाबा जी आयो द्वार पे। गोपी दौड़ के गई, जाके देखा ला मैया एक ऐसो बाबा जी आयो ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी देखियो होगो मैया तेने ना कभी देखेगी, ऐसो कौन सो बाबा जी आगो। बोले मैया तू ही चली जा। मैया बड़े भाव से गई द्वार पर, संत आए घर में तो इससे बड़ा क्या हो सकता। मैया पहुंच गई और जैसे मैया बाहर गई बाबा का दर्शन किया, बस मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। बोले बाबा जी कहां ते पधारे हो? बोले मैया बड़ी दूर ते आए हैं, हिमालय की गुफा में ते आए। अच्छा बाबा जी कहां लोगे, भोजन पाओगे के सोना लोगे के चांदी लोगे, कहां लोगे? बोले अरे मैया तो को हमारे स्वरूप पे देख के लग रहे हो कि हमको सोने चांदी की जरूरत है। अरे मैया हमको सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, तो फिर बाबा कहाँ चाहिए? ले मैया मैं तो बड़ी दूर ते तेरे लाला को दर्शन करने आयो, मैं तेरे हमने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, एक बार वाको हमको दर्शन करवा दे। मैया ने कही कहा बाबा आपके कहियो कहा मांगने आयो तू? बोले मैया मांग नहीं रहे हो, तेरे लाला के दर्शन की इच्छा लेके आयो। मैया बोली बाबा देख तू जो कहेगो मैं तो को दे दूंगा, तू कहेगो मोकू मैया एक बड़ो महल दे दे तो बाबा महल भी दे दूंगी, पर अपने छोरा के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बोले नहीं कराएगी, क्यों नहीं कराएगी? मैया बोली बाबा तेने अपनो रूप देखियो है, तेरे रूप पे देख के मो 80 बरस की बूढ़ी डोकरी है डर लग रहे हो है, तो मेरे 4 दिन के छोरा की का हालत होगी?
इतनो छोटो सो लाला और तेरे सामने लाऊं कहां पर, तो तेरे गले में ते कोई सांप सपूरो उतर के मेरे छोरा पे चढ़ गयो तो। अरे मैया तू नहीं जाने, तेरो छोरा ऐसो वैसो नहीं है, सांपन ते नहीं डर पे वो। अरे मैया वो तो सांप पे सोवे है, और कहा बताऊ मैया आगे भविष्य में चल के तो वो सौ पनवारे सांप के ऊपर नाचेगो। सांप तो वाके वश में रहे। मैया बोली बाबा मेरो छोरा जो है ना ग्वारिया को छोरा है, सपेरा को छोरा नहीं है के सांपन पे नाचे वो। और वैसे भी बाबा है सके तेरे जहां तू आयो है, जहां लाला ते मिलने आयो है, शायद तू गलत एड्रेस पे आ गयो, कहीं और जानो चाहिए तो, क्योंकि मेरे घर में जो लाला रहे ना वो सांप वापन ते नहीं खेले, वो तो चार दिन को लाला है, भूख लगे तो रोवे, हंसे, बात करे, तो बाबा लगे तू गलत जगह आ गयो। बाबा बोले नारी मैया मैं गलत जगह नहीं आयो, एकदम सही जगह आयो, तेरे लाला के दर्शन करने आयो। मैया बोली या ब्रज में बहुत लाला है, जा काई के भी दर्शन कर ले। बाबा बोले ना दर्शन तो तेरे ही लाला के करूंगा। मैया बोली देख बाबा तू हमको जाने नहीं है, हम बड़ी हटीली अम्मा है, एक बार अगर जिद कर ली ना तो फिर हमारी बात से हम हटेंगी नहीं। बाबा बोले तो मैया तू भी हमको नहीं जाने, हम भी बड़े हटीले बाबा हैं, एक बार तेरे आंगन में धूनी रमा के बैठ गए ना तो सब दास दासियों को भी लगा दे तो भी हटेंगे नहीं। मैया यशोदा बोली बाबा तू धूनी रमा च धूना रमा, मैं तो को दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले कब तक नहीं कराएगी, कभी तो अपने छोरा को बाहर लेके आएगी दरवाजे पे ते तब देख लूंगो। मैया बोली मेरे घर में एक नहीं कितने दरवाजे कितने द्वार है, कहीं ते भी ले जाऊंगी पर जहां तू बैठे होगो वहां ते नहीं लेके जाऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को खेलवे तो बाहर भेजेगी, बोले नहीं भेजूंगी, या के ग्वाल वालन को घरन में ही बुला लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले अपने छोरा को ब्याह तो करेगी, ब्याह करेगी छोरा घोड़ी पे तो चढ़ेगो तब तो बाहर निकालेगी घर से तब दर्शन कर लूंगो। मैया बोली छोरा कुआरो रख लूंगी पर तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा बोले बड़ी हटीली अम्मा है यू, हम तो सोचे हम ही है जो कछे पर ये तो हमारी गुरु है। अच्छो तुम्हें हम भी यहीं बैठे, जब तक दर्शन नहीं कराएगी हटेंगे नहीं, अंतिम सांस तक मर जाएंगे पर यहां से हटेंगे नहीं। मैया बोली बैठो रे मैं अपनो काम धंधो संभाल, और मैया भीतर चली। भोलेनाथ जी ने सोचा कि तो गड़बड़ है, मैया तो पूरी एकदम पूरे रोल में है, ये तो दर्शन नहीं कराएगी। फिर सोचा कि चलो जिनसे मिलने आए हैं थोड़ा सा उनसे भी तो अप्रोच लगा लें, कुछ क्या पता काम ही बन जाए। भोलेनाथ जी मनी मन ठाकुर जी को कहते अरे प्रभु ये कोई बात हुई, हम इतने दूर से आपका दर्शन करने और आप भीतर झुक के बैठ गए, अरे कुछ लीला करके कुछ एक बार कुछ करो ना। अब बेचारे ठाकुर जी बीच में फंस गए, एक तरफ मैया एक तरफ बाबा, किसकी माने। लेकिन बाबा अरे बाबा अगर दर्शन करना है तो कुछ दिन बाद आ जाते, हमको थोड़ा बड़ा हो जान देते, कुछ बोलते, हम अपने पांव से चल के बाहर आ जाते, अब तो चार दिन के कुछ कर भी नहीं सकते रोने के अलावा। बोले हाँ प्रभु बस यही कर दो, यही करो, यही नाटक आपका सबसे बढ़िया रहे। बोले क्या, बोले रोना आरंभ करो। ठाकुर जी ने सोचा ये एकदम बढ़िया नाटक रहेगा, और श्री ठाकुर जी ने पल्ले में पड़े पड़े रोना आरंभ किया, रोना आरंभ किया, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब देखो कभी कभी बच्चे रोते हैं ना, एक तो होता सचमुच रोना, एक होता नाटक करके रोना। एक नाटक करके जब बच्चे रोते हैं ना तो बड़े ट्यून में रोते हैं, इसका मतलब पक्का नाटक कर रहा है, वो एकदम रिदम में रोते हैं, एकदम ताल में। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जैसे रोने की आवाज आई तो आवाज बाहर गई, अब बाहर गई तो एक गोपी बाहर से भीतर आई। अरे मैया कहा कर रही है,
तो कु तो लगे छोरा भी पाल लो नहीं आवे। देख छोरा रो रहा है और तू आराम से बैठी है। भैया बोली गोपी कहा करू। बोले रो रहे हो तो याकू कछु दूध पिला कछु माखन मिश्री खिला। मैया ने दूध पिला दियो। अब भी चुप नहीं हुए। मैया खिलौना लेकर के झन झन झन हिलाई तब भी चुप नहीं हुए। मैया ने पल्ला में झुलाए तब भी चुप नहीं हुए। गोपी तो चुप ही नहीं है रहा, अब कहा करे। गोपी बोली मैया मोकू तो लगे तेरे छोरा पे काई। गोपी ने नजर लगा दी क्योंकि मैया भूखो होतो तो दूध भी पिला दियो चुप है जातो। मैया कछु खेल खिलौना चाहिए तो चुप है जातो। पर मैया ये तो काई गोपी ने नजर लगाई। मैया बोली अब कहा करे। बोले कहा करे का नजर उतारो या की। बोले कैसे नजर उतारे। बोले जा रसोई ते वो लेके आ राई नून लेके अभी तड़के। मैया गई नमक लाई राई मिर्ची लाई और लाला की नजर उतारी। आए की पलाए की अड़ोसन की पड़ोसन की भूतनी पिसाचनी यहाँ की वहां की इधर की उधर की सब मेरे लाला के ऊपर से उतर जाए। अब नजर उतारी। अब नजर उतारने के बाद तो काना कम रोने चाहिए पर ये और उल्टा डबल हो गए और जोर जोर से रोने लगे। गोपी अब कहा करे ये तो अब भी चुप नहीं हुए। अब गोपी नए नए आइडिया देती जा रही है। बोली मैया देख दूध भी पिला दियो तब भी चुप नहीं भयो। या को खिलौना भी दियो तो भी चुप नहीं हो। नजर उतारी तो भी चुप नहीं भयो। अब तो मैया वो पक्की पतो चल गई बीमारी कहा है। भैया बोली कहा बीमारी है। बड़ी भयंकर बीमारी है मैया। अरे पर बीमारी है का। बोले मैया मोकू तो समझ आ गई या के ऊपर कोई भूतनी चढ़ गई। ओ मैया अब आप भूतनी को उतारवे के खातिर जब तक प्रयास नहीं करोगी तब तक ये छोरा चुप नहीं होगा। अरे गोपी भूतनी चढ़ गई है तो भूतनी कैसे उतरेगी। बोले मैं थोड़ी उतारूंगी वाकई तो कोई बाबा जी कोई तंत्र मंत्र जानने वालों कोई बुलानो पड़ेगा वो भूत उतारे हो। तो गोपी अब कौन को बुला के लाए मैं तो काय को जानू नहीं हूँ। भूत प्रेत मो तो पतो भी नहीं कैसे रहे। गोपी बोले मैया टेंशन मतलब मैं हूं ना अभी काय को बुला के लाती हूँ। तुरंत घर से निकली थी कि दरवाजे पर बाबा भोलेनाथ धूना रमा के बैठे। गोपी ने देखी नजदीक गई। बाबा का रूप भी कुछ तंत्र मंत्र जैसा ही है तो जाके पूछी बाबा एक बात बताओ तुमको भूत उतारने आते हैं। बाबा बोले पहले ये बताओ किसको चढ़े उस पे डिपेंड करता है। बोले हमारी मैया है ना वह को लाला है चार दिन को बड़े जोड़ते रो रहे हो। हमने सोची कोई भूत चढ़ रहे हैं तो भूत उतारवे वारों कोई बाबा चाहिए तो तुम तो सीधी बात पे आओ ना तुम बताओ तुमको आते हैं कि नहीं आते। बाबा बोले हाँ। मन में सोचा कि उधर से नाटक चालू हो चुका अब तुम भी कर दो। बाबा जी बोले अरे गोपी क्या बात करती है तू हमसे पूछ रही भूत उतारने आते कि नहीं आते। अरे गोपी मेरो तो नाम ही भूतनाथ है मैंने ऐसे बड़े बड़े भूत उतारे हैं तेरे छोरा के ऊपर इतनो कोई बड़ी बात है अभी लेके आए चुटकी बजाएंगे और सब भूत उतर जाएंगे। गोपी राजी हो गई और खुश होती होती मैया ओ मैया बाबा जी मिल गयो भूत उतार देगो एक मंत्र पढ़ोगे और सब भूत प्रेत उतर जाएंगे। पर कौन सो बाबा जी। बोले मैया कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहीं तेरे आंगन में बैठो। मैया बोले ले कराई काम खराब मैं कब ते वाते लड़ रही हूँ दर्शन नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी नहीं कराऊंगी और तू आकू जाके क्या ही के छोरा के भूत उतार दे। तेने वाको रूप देखियो है कैसो रूप है वाको। गोपी बोली मैया तो वाके रूप ते कहा लेनो देनो तू ला जाके लाला को लेके गोद में दूर ठाड़ी है जाइयो नजदीक मत जाइयो और बाबा दूर ते ही मंत्र फूंक देंगे और तेरो लाला एकदम स्वस्थ है जाओ। अब तो कु बाबा अपनो अहम ज्यादा प्यारो है या लाला को स्वास्थ्य ज्यादा प्यारो बता। मैया बोली मोकु तो लाला प्यारो तो बस फिर ले अपनी गोद में लाला को और चल मेरे साथ बाहर डर मत दूर जाके ठाड़ी है जाइयो। माँ यशोदा लाला को गोदी में उठाई ऊपर से काला कपड़ा ढक दिया कहीं छोरा को
बड़ी भोली है मैया, बड़ी भोली है। डक करके चल पड़ी, आगे बढ़ती बढ़ती डर डर के बढ़ रही है और डरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गोपी पीछे से मैया को आगे बढ़ा रही है। वहां भोलेनाथ खड़े हैं, यहाँ ठाकुर जी खड़े, और जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी को देखा और श्री बाल कृष्ण लाल ने बाबा भोलेनाथ को देखा, और जैसे नजर से नजर दोनों की मिली, मिलते ही श्री ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया, एकदम रोना बंद कर दिया। मैया बोली, लगे बाबा जी जानकार तो है, इतनी दूर ते ही मंत्र फूके और छोरा चुप कर दियो। अब मैया को थोड़ा सा और इच्छा जागी और नजदीक जाने की, और नजदीक चली गई बाबा के, और पास गई और पास गई। माँ यशोदा मैया से पूछ रही है, मैया बाबा को दर्शन कराती है, बाबा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद बोलते हैं कि मैया तेरे छोरा के ऊपर ते भूत सब प्रेत सब उतर गए। मैया बोली, ऐसे कैसे उतर गए, जब तक या के कान में कछु मंत्र नहीं बोलोगे तो दोबारा भूत चढ़ जाएंगे, तो कान में कछु मंत्र बोलो तो सही। बाबा भोलेनाथ ने कान में मंत्र बोला, और जैसे मंत्र बोला श्री ठाकुर जी जोर जोर से खिल खिला करके हंस दे। किसी ने पूछा ब्रजवासियों से कि भैया आप बताओ ऐसा कौन सा मंत्र बोला था कान में, तो बोले भैया मंत्र भंत्र कुछ नहीं बोला, चाचा वृंदावन दास जी का पद है और उसमें कहा कि कान में मंत्र नहीं बोला, बाबा भोलेनाथ ने कान में एक बार श्री राधा रानी का नाम बोल दिया और राधा बोलते ही श्री ठाकुर जी खिलखिला के हंस दी, जोर से हंस दी। भैया बोली, हाँ बाबा जी तो बड़ा, देखो अभी तक छोरा रो रहा हंसन लगे। मैया की इच्छा और बड़ी, अच्छा बाबा एक बात बता, भूत तो पे उतारने आवे पर तो को हाथ देखनो आवे, भविष्य बतानो आवे। मैया ना ऐसी होती है, एक काम में 10 काम करना चाहती है। कोई एक आयोजन हो, एक कार्यक्रम हो, उसमें एकादशी का उद्यापन भी कर लेंगी, उसमें गृह प्रवेश भी कर लेंगी, एक ही काम में सब हो जाए ऐसा कुछ महाराज मुहूर्त बता दो। तो यहाँ पूछ रही है बाबा से, बाबा अच्छा भविष्य देखना आता है? बाबा बोले, क्यों नहीं आता, किसका देखना है? बोले लाला को देखनो। बोले वाके ताई तो लाला को मेरी गोद में देनो पड़ेगो। मैया बोली, ऐसे कैसे, तेरी गोद में कैसे दे दूंगी? बाबा बोले, तो ठीक है मत दो, हम चलते हैं। बोले ना ना ना ना बाबा, रुक जा, तेरी गोद में दे दूंगी, पर देख बाबा जरा संभाल के, अपने नागन्ने ने थोड़ा संवार के रख, समझा के रख। बाबा ने लाला को गोदी में लिया और हाथ का दर्शन करते करते बोले, मैया अरे यशोदा मैया, तेरे तो मैया भाग्य खुल गए, कैसो लाला पायो है तेने, मैया तो को पतो नहीं तेरो कितनो नाम रोशन करेगो, मैया तो को पतो नहीं यू बड़ो है के बहुत बड़ो राजा बनेगो, मैया बड़ो है के या के सोने के महल होंगे, और तो और मैया हजारों लाखों या के दास दासी होंगे। मैया बोली, बाबा मैंने तो को काम की बात पूछी और तू कहा उल्टी सीधी बात बता तो जा रहे हो। अरे राजा बनेगो, नाम रोशन करेगो, बड़ो होगो, महल बनाएगो, तो वो तो या के ना ही होगो, मेरे निया का होगो, मेरे निया भी तो कुछ बता। बाबा बोले, मैया तू बता तो को तेरे निया कहा चाहिए? बोले मोकू तो बस इतना बता दे कि मेरे घर बहू कब आएगी, मेरे लाला को ब्याह कब होगो। बाबा बोले, 4 दिन को तेरो छोरा है, अभी यहाँ पे आँख खोलनी आवे नहीं और तो बहू की पड़ी है। बोले ना ना बाबा, अब देखना यू कालो कलूटो सो है तो सारी ब्रज की गोपी कहें कि या को कोई अपनी छोरी नहीं देगो, तो बाबा तू ही बता, छोरी नहीं, अब मैंने तो कितने सपने सजाए, बहू आएगी मेरे पाम दबाएगी, बोकू रोज नए नए व्यंजन खवाएगी, और बाबा बताना या को ब्याह होगो भी के नहीं होगो, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है। बाबा ने हाथ देख करके मैया को बता रही, मैया कैसी बात करती है तू, या के हाथ में ब्याह की रेखा है के नहीं है पूछ रही है,
अरे मैया या के हाथ में इतनी लंबी ब्याह की रेखा है कि यहाँ तक नहीं समा रही। बोले मतलब मैया तेरे छोरा की 1, 2, 10, 50, 100 नहीं 16,108 ब्याह होंगे। अब जैसे मैया ने सुनी तो बस वहीं खड़ी की खड़ी। बाबा बोले कहाँ सोच रही है मैया? बोले बाबा न्यू सोच रही हूँ, अगर दिवाली वाले दिन मेरी सबरी बहू मेरे पाम छीने खट्टी आ गई तो मेरी का हालत होगी। बाबा वहीं बैठे बैठे मेरे तो 16,108। अरे बाबा काय को पागल बना रहे हो, या कलुआ को तो एक बहू नहीं मिलेगी, तू 16,108 की बात कर रहे हो, कौन देगो या को अपनी छोरी? बाबा ने कहा मैया अब जैसा तू सोचे सोच, भविष्य है देख लेना। मैया ने सोचा कि बाबा ऐसे ही मजाक कर रहे, मजाक में बोल दिया, पर मैया उसको मजाक में ले गई, अब उसको क्या पता ये सत्यता है। अच्छो भैया अब मैं चलूं, समय है गयो है, भविष्य बता रहे हैं। ठाकुर जी कहते बाबा जी अब बहुत भविष्य बता लिया आपने, अब आप जाइए कैलाश पर्वत पर, मैया जी आपको याद कर रही होंगी, अब आप प्रस्थान करिए। तो भोलेनाथ जी मैया को प्रणाम करते हैं, कहते मैया अब मैं चलता हूँ। मैया कहती ना ना बाबा तू यहाँ ते मत जा, ब्रज छोड़ के मत जा। क्यों? क्योंकि क्या का पतो कब मेरे छोरा को फिर नजर लग जाए, तो कोई तो चाहिए नजर उतारवे को। तब मैया कहती है रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। यही रह जाओ बाबा। और बाबा भोलेनाथ वहीं ब्रज में अपने लाला के सानिध्य में रहे। आज भी ब्रज जाइए, चार स्थान पर चार रक्षक बन करके बाबा भोलेनाथ ब्रज में विराजमान।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है?
1: अगर मैं कहूँ कि

कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से, फॉर एग्जांपल आपके लिए इजी कर देती हूँ कि जैसे सूर्य के सामने

0: मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रही है। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं तो वहां रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स है उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
1: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें। और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वो सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था। पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं। जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आपके लिए इजी कर देती हूँ कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का, तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसीलिए वो लाइफ में इतना सक्सीड कर रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

0: 89.6 रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ हटके।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद, और कैसा रहा आपका वीकेंड पहले तो ये बताइए। और आई नो जब वीकेंड खत्म होता है ना तो मन बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि फिर से वही ऑफिस वाला लूप स्टार्ट हो जाता है, और मंडे वाले दिन ना स्पेशली मंडे ब्लूज फील होते हैं। तो भाई डोंट वरी, अंजलि है ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ अंजलि ऑन एयर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तो देखिए भाई, मंडे वाला दिन है, और अगर आज के दिन को ना ऐसे मूड चढ़ाकर काम करेंगे ना तो वैसे ही मजा नहीं आने वाला, बिकॉज वीक की स्टार्टिंग आज के दिन से होती है। तो बेटर है कि आज के दिन को आज एक प्यारे से स्माइल के साथ शुरू करते हैं, और देखिए चुटकी बजाते ही ना फिर से वीकेंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मंडे आ गया है, वीक स्टार्ट हुआ है, तो इस वीक को ना नई एनर्जी, नई वाइब, नई मस्ती, नए एंटरटेनमेंट के साथ शुरू करेंगे। आज बहुत सारी अपडेट्स लेकर आ गई हूं मैं, बहुत कुछ है आज मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा आपको इंतजार। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस। ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-00-36।

हेलो हेलो जी, रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और देखिए भाई, बातें बहुत सारी करने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले ना ये जान लेते हैं कि आज अपने शहर का यानी कि आज फरीदाबाद का मौसम कैसे रहने वाला है। तो अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 32 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 24 डिग्री है और विंड स्पीड आपको 8 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 67%। यानी कि आज भी दिन सनी सनी रहने वाला है, अच्छी खासी धूप है, अच्छी खासी गर्मी है। तो इस बदलते मौसम मेरा अपना ख्याल जरूर रखेगा, और पता है ना ख्याल रखने के लिए क्या करना है वो सारी बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले। तो बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Diwan. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.

हेलो हेलो जी। तो देखिए भाई, मैं अक्सर ना आपको साइबर की कहानियां बताती हूँ कि मार्केट में ना किस तरह के स्कैम आ गए। आपको क्या लगता था कि स्कैम सिर्फ यही होता है आपके बैंक बैलेंस खाली हो जाना, वो भी इलीगल तरीके से? तो भाई देखिए, स्कैम की ना एक और कहानी मैं लेकर आ गई हूँ और इसका पार्ट ना हम धीरे धीरे बनते ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं चाइना। चाइना से एक शॉकिंग ब्यूटी स्टोरी सामने आई है, जिसकी वजह से 75 साल की एक महिला ने 2016 से लेकर अब तक ब्यूटी ट्रीटमेंट पर लगभग 4.3 करोड़ खर्च कर दिए, यानी कि उनकी पूरी रिटायरमेंट सेविंग्स जो थी ना वो खत्म हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ पर जो इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि स्किन लाइटनिंग, थेड लिफ्टिंग, मसाज, आईब्रो, लिप टैटू और न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाए। आज मुझे पहली बार पता चल रहा है कि क्या क्या ब्यूटी सर्विसेज मिलती हैं जो मुझे आज तक पता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि थ्रेडिंग और अपर लिप से ना काम बन जाता है, लेकिन भाई साहब इतना कुछ कराना होता है। आई नो आप ही सोच रहे हैं कि यार अंजलि ये स्कैम कैसे हुआ। भाई देखिए, स्कैम की कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। जब ये मोहतरमा ये सारे ट्रीटमेंट्स करा रही थी ना, इन्हें मार्केट रेट पता ही नहीं था, और जब ये ट्रीटमेंट कराने गई तो भाई इनको चार्ज किया गया 10 से 20 गुना ज्यादा, और हद तो तब हो गए जब एक लिप टैटू के लिए इन्हें पैकेज दिया गया 5.7 लाख का। और जब ये सारे बिल्स इनकी बेटी के सामने आए ना, तब इनकी बेटी को पता चला कि मेरी मम्मा तो ये स्कैम का शिकार हो चुकी है, अपनी ब्यूटी की वजह से वो अपनी सारी सेविंग्स जो है इस पर उड़ा चुकी है। देखिए, अगर अब तक आपको लगता था ना स्कैम का मतलब यही है कि कोई स्कैमर आकर आपके बैंक से पैसे लूट कर ले जा रहा है, तो ना ना ना, ना। मार्केट में ना बहुत तरह के स्कैम आ गए हैं। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मार्केट में इन तरह के स्कैम से भी अब आपको बचकर रहना है। और लव योर सेल्फ यार, अपने आप को प्यार करो, अडोर करो अपने आप को, और इसी के साथ एंजॉय करो ये ट्रैक जो है खास आपके लिए।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

हेलो हेलो जी, तो आ गई मैं फिर से लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। और आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट उन सभी क्रिएटर्स के लिए है जो यूट्यूब से अर्निंग के ड्रीम्स देख रहे हैं। तो भाई देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अपडेट ना आपका दिल तोड़ने वाली है आज, तो अपने दिल को रखिएगा थाम कर, बिकॉज यूट्यूब ने अनाउंस कर दिया है फ्रॉम 1 फरवरी 2027 से। सो भाई जितने भी नए क्रिएटर्स है ना, उनके लिए एड रेवेन्यू मोनेटाइजेशन के लिए एंट्री क्राइटेरिया टफ होने वाला है। तो चलिए फिर अभी का क्राइटेरिया भी जानते हैं। और अभी का एड रेवेन्यू क्राइटेरिया कहता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर के साथ 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर्स या फिर 90 दिन में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज चाहिए। तो भाई जो ये न्यू रूल्स आए हैं, ये अपने टारगेट को ना डबल करके आए, यानी कि अब आपको चाहिए 8000 वॉच आवर्स, 2 करोड़ शॉर्ट व्यूज बस। मुश्किल है आई नो, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और आज नहीं तो कभी तो सही। तो देखिए, शुरुआत तो आपको करनी है, और इसी के साथ ना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ चेंजेस न्यू क्रिएटर्स के लिए हुए हैं जिनका अकाउंट बनेगा न्यू, और जितने भी पुराने क्रिएटर्स है ना, उनके लिए पुराने रूल्स ही चलेंगे। तो भाई यहाँ पर हुआ है भेदभाव और ये पार्शियलिटी है। तो देखिए, यहाँ पर अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ एक शॉर्ट्स के भरोसे मत बैठिएगा, कंसिस्टेंट कॉन्टेंट और लॉयल ऑडियंस जरूर बनाएगा, और फिर देखिएगा एक दिन आपके वॉच आवर्स, आपके जितना भी क्राइटेरिया है कंप्लीट हो जाएगा, और आप भी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। खैर, मेहनत करेंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं अपने मूड को थोड़ा सा लाइट, और मूड को लाइट करने के लिए ना बजा देती हूँ एक शानदार सा गाना। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आती हूँ ना थोड़ी देर में।

खैर कौन बनेगा करोड़पति तो पता नहीं, लेकिन कौन कर रहा है स्कैम ये जरूर पता लगाना है। अब मार्केट में ना एक और स्कैम आ गया, और ये स्कैम आया है कौन बनेगा करोड़पति के जैसा। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा कि आपको फेसबुक पर ना एक गेम दिखाई दे किस चेहरे को पहचाने, और अगर आपने ये चेहरा पहचाना ना तो आपको 8.5 लाख रुपीज का प्राइस मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कोई आपको एक चेहरा पहचानने का इतना बड़ा अमाउंट क्यों देगा, और अगर दे भी देता है तो आप इतने लकी कैसे हो सकते हो। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक 54 ईयर ओल्ड मैन ना इसी तरह से फेक केबीसी गेम की ट्रैप में फंस गया। और हुआ कि सबसे पहले स्कैमर ने प्राइस रिलीज करने के नाम पर ना इनसे लगभग 2000 रुपए ले लिए, और फिर इसी तरह से अलग अलग टैक्स इनसे मांगा गया, और इन्हें पता भी नहीं चला, इन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ, इनके बैंक से 1.5 करोड़ ट्रांसफर कर लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए। किसी भी लॉटरी किसी भी प्राइस के लालच में मत आइए, किसी के साथ भी अपना KYC OTP एंड पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, खासकर किसी लालच के चलते। तो हमेशा याद रखिए कोई भी जेन्युइन प्राइस लेने के लिए ना बार बार टैक्स नहीं मांगेगा आपसे। और साथ ही एक और चीज का आपको ख्याल रखना है, सेलिब्रिटी या फिर RBI के नाम पर जितने भी फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं ना उन पर भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि फ्रॉड से बचिए, और अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है तो आपको करना क्या है, 1930 पर कॉल करना है, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। इसके साथ ही आप cybercrime.gov.in पर भी जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं थोड़ी देर में।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दे।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

यार मुझे नहीं पता कि कौन वो लोग हैं जिन्हें टमाटर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यार जब मेरे किसी जंक फूड के टॉपिंग में टमाटर आ जाता है ना, तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और मेरे ऑफिस में ना रोहित सर है, जिन्हें टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी टमाटर वाला कुछ नहीं खा सकते। अगर टमाटर उनको सब्जी में भी दिख जाते हैं ना, तो यार वो दूर रहते हैं। उन्हें इस कदर नफरत है इस लाल रसीले टमाटर से। लेकिन आपको पता है ये हमारे ब्रेन के लिए कितना बढ़िया होता है। ये सिर्फ सैलेड में काम नहीं आता, खाने में काम नहीं आता, ये हमारे ब्रेन को सपोर्ट करने में भी काम आता है। और आपने कभी सोचा है कि रोज टमाटो या टमाटो पेस्ट खाने से ब्रेन पर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है? तो मैं बता देती हूँ आज कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एक रीसेंट रिसर्च आई है, क्लिनिकल ट्रायल में हेल्दी एडल्ट्स पर रिसर्च की गई है, जिन्होंने टमाटो पेस्ट की कंजप्शन पर स्टडी की, एंड फाइंडिंग्स में पाया कि कंसंट्रेशन एंड एसोसिएटिव मेमोरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखी गई है सिर्फ टमाटर खाने से। और रिसर्चर्स ने ब्रेन के फंक्शनल कनेक्टिविटी पैटर्न में भी चेंजेस देखे हैं। तो भाई देखिए, टमाटर खाने से फायदा तो बहुत बढ़िया है। तो अगर टमाटोज की बात करूँ तो इसके अंदर आपको लाइकोपिन मिलता है, जो कि अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्टडी ये प्रूव नहीं करती कि टमाटो कोई मेमोरी मेडिसिन है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना कि टमाटो खाने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी, तो अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। रिसर्च अभी लिमिटेड है, इसलिए बैलेंस डाइट का पार्ट बनाना टमाटो को बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप टमाटो नहीं खाते हो ना मेरी तरह, जो बर्गर में टमाटो देखकर ही भाग जाता है, तो आपसे मत भागना यार, खा लेना, क्योंकि अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ। और जो मेरे साथ रोहित सर है ना, उन्हें भी जरूर ट्राई करने वाली हूँ कि यार खाओ टमाटर, टमाटर में अच्छी चीज है। सो अब तक सिर्फ पालक खाया जाता था ना, अब टमाटर भी खाया जाएगा। और इसी के साथ ना एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं थोड़ी ही देर में।

अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये जो डस्टबिन में आप कूड़ा डाल रहे हैं ना, ये जो डस्टबिन में आप चीजें डाल रहे हैं, आपको पता है इन चीजों से ना कल जाकर बिल्डिंग मटेरियल भी बन सकता है। यकीन नहीं होता ना मेरी बातों पर, इसीलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आती हूँ। तो भाई देखिए, जापान से टेक्नोलॉजी की कैसी न्यूज सामने आई है ना, जिसे सुनने के बाद ना आप कहेंगे कचरे का भी इतना बड़ा काम हो सकता है, ये तो सिर्फ जापान ही कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की रिसर्चर्स ने ये बताया है कि डिस्कार्डेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज करके एक प्लांट बेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेवलप किया गया है और प्रोसेस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले जितना भी फूड वेस्ट है कलेक्ट किया जाएगा, फूड वेस्ट को ड्राई करके पाउडर बनाया जाएगा, फिर पानी ऐड करके और उसमें थोड़ी हीट प्रेशर के साथ मोल्ड किया जाएगा, जैसे कि कुछ देर में आपको ईंटें मिल जाएंगी। और ये ईंटें बनी होंगी किससे भाई, आपके फूड वेस्ट से। यानी कभी आपने सोचा है जिस खाने को हम वेस्ट समझ रहे थे, कितने काम की चीज है यार। और अगर ऐसी ही चीजें रिसाइकल होती रही ना, तो एक दिन कुछ वेस्ट ही नहीं बचेगा, सब कुछ यूज्ड में आ जाएगा। इसी को फिर रीयूज रिसाइकल हम लोग कहेंगे। और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही सस्टेनेबल है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट को उसकी चीजें भी मिलेंगी और फ्यूचर ना यार, फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। देखिए जापान बहुत ज्यादा आगे निकल गया, एक दिन हम लोग भी कुछ ऐसा इनोवेशन करेंगे जरूर। और हम लोग भी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, लेकिन ये इनोवेशन ना कुछ हटके है। तो ऐसे इनोवेशन सुनने के लिए ना बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं थोड़ी देर में।

बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो माइग्रेन के दर्द को बोलते हैं कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा सरदर्द ही तो होता है, इतनी ड्रामे करने की क्या जरूरत है। तो भाई उनके लिए मैं आज का फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ, उन्हें बताने के लिए आ गई हूँ कि माइग्रेन का दर्द जो है बिल्कुल भी नॉर्मल हेडेक नहीं होता है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक माइग्रेन को इग्नोर करना, दर्द शुरू होने के बाद भी मेडिसिन को लेने में देर करना, बार बार पेन किलर्स लेना और प्रॉपर नींद ना लेना, ये सब माइग्रेन को और भी बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले अपने ट्रिगर को पहचानिए, टाइम पर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, बिकॉज जो माइग्रेन का दर्द है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कभी कभी ब्लर दिखने लग। आप सोच कर जरूर देखिएगा कि वो जो दर्द है वो कितना पीक पर होता है कि जब इंसान को धुंधला धुंधला नजर आता है, वो जो गाना है ना, सब कुछ धुंधला धुंधला, तो भाई लगता है वो माइग्रेन के दर्द को लेकर ही बना है। तो हमेशा याद रखिए, हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता और हर माइग्रेन को इग्नोर करना भी सही नहीं होता। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो एनर्जेटिक रहेंगे। और साथ ही एंजॉय कीजिए, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, तो चलिए फिर ले आई हूँ डिड यू नो। आई नो डू यू नो से सीधा डिड यू नो पर आ गए, यानी कि अपने दिमाग को अब छोटा सा सरप्राइज देने का टाइम आ गया। तो देखिए, आज का डिड यू नो ये है कि क्या आपको वाकई पता था जो ये शार्क्स हैं, ये ट्री से भी पुरानी है, यानी कि जो शार्क्स हैं वो पेड़ों से भी पुरानी है। अब भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट कहते हैं कि जो शार्क्स हैं इनके एंसेस्टर्स अर्थ के ओशन में पेड़ों के आने से भी पहले से मौजूद थे। अब अगर शार्क्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो 400 मिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ इसके बाद अपीयर हुए थे। मतलब ये तो वही हो गया ना, खोदा पहाड़ निकली चूही। हम इन ट्रीज को कितने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं और ये सोचते हैं कितनी एशियंट है ना ये पेड़, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इनके भी पूर्वज बैठे हुए हैं और वो है शार्क। तो भाई देखिए, नेचर की टाइमलाइन सच में माइंड ब्लोइंग है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इसी के साथ डिड यू नो में आज मैंने आपको एक सुपर हिट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। और इसी के साथ चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: पैसा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

आपने ये तो सुना ही होगा, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो, और जब हमारे साथ कुछ खराब चीजें होती है ना, तो ये लाइन सबसे ज्यादा खराब लगती है। तो आज मैं आ गई हूँ आपको साइबर स्मार्ट बनाने के लिए, और साथ ही आज का जो केस है ना, वो हमारे लिए ना एक इम्पोर्टेंट वार्निंग भी लेकर आया। वार्निंग ये है, ऑनलाइन फ्रॉड की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो जयपुर से आज का इंसिडेंट आया, और इंसिडेंट में ये है, 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को फेक मैरिज ब्यूरो एम्प्लॉय ने शादी के नाम पर कॉन्टेक्ट किया और उनसे करीब 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। लेकिन इस प्रेम कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इनके बेटे को ये पता चला कि कोई इनकी मम्मी से बार बार पैसे मांग रहा है। और अगर बेटे की एज मैं आपको बताऊं ना, तो आप ये बोलेंगे कि बेटा तो बहुत ही बड़ा है। बेटे की एज है 79 ईयर्स। लेकिन जब उन्हें ये पता चला ना कि कोई उनके एल्डरली मदर से पैसे की डिमांड कर रहा है, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो देखिए, आज का इंसिडेंट हमें ये बताते हैं, अपने घर में पेरेंट्स या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक बार जरूर बात कीजिए। उन्हें ऑनलाइन कोई भी शादी, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट या फिर इमरजेंसी के नाम पे कोई भी उनसे पैसे मांगता है, तो उन्हें जरूर बताइए कि पहले प्लीज वेरीफाई करें। और आपको बताया ना, साइबर स्कैम से बचने का गोल्डन रूल सिर्फ यही है, वेरिफिकेशन पहले, पेमेंट बाद में। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर स्मार्ट। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर।

हेलो हेलो जी, तो आज का सोशल स्यापा लेकर आ गई। और आज का सोशल स्यापा है एकदम फिल्मी। कभी आपने सोचा है कि आप बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हो? तो भाई, जो लोग सिंगल है ना, जिन्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, तो बॉयफ्रेंड रेंट करने वाला ट्रेंड चला था। तो भाई, यहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने ना जितने भी लड़कियां हैं उन्हें वॉर्न कर दिया है, रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड ऑफर से एकदम सावधान रहिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जितने भी अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर कॉफी डेट, मूवी, शॉपिंग, यहाँ तक कि वेडिंग में पार्टनर बनाने जैसे पैकेजेस ऑफर में आ रहे थे। और यहाँ पर लिखा जा रहा था कि रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आया जब पुलिस वाले को पता चला कि यहाँ कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स हैं ये AI जनरेटेड और इंटरनेट से चोरी हुई वाली प्रोफाइल थी। यानी कि इसके पीछे हो सकते हैं साइबर ठग्स। तो आज की स्टोरी आपको ये बता दी है कि इस तरह के किसी भी स्कैम में मत फंसिएगा। अगर आपको कोई पार्टनर बनाना है तो वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं, रियल वर्ल्ड से बनाइए। और अगर आपको कोई कहता है ना कि चलिए बॉयफ्रेंड डेट पर चलकर एक डेट करते हैं, तो भाई उस पैकेज को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दें और खुद ही अपने आप को साइबर क्राइम का पार्ट बना लें। तो ऐसी चीजों से रहिए अवेयर और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

हेलो हेलो जी, तो आज का सोशल स्यापा लेकर आ गई। और आज का सोशल स्यापा है एकदम फिल्मी। कभी आपने सोचा है कि आप बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हो? तो भाई, जो लोग सिंगल है ना, जिन्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, तो बॉयफ्रेंड रेंट करने वाला ट्रेंड चला था। तो भाई, यहाँ पर हैदराबाद पुलिस ने ना जितने भी लड़के हैं उन्हें वॉर्न कर दिया है, रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड ऑफर से एकदम सावधान रहिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर जितने भी अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर कॉफी डेट, मूवी, शॉपिंग, यहाँ तक कि वेडिंग में पार्टनर बनाने जैसे पैकेजेस ऑफर में आ रहे थे, और यहाँ पर लिखा जा रहा था कि रेंट ऑफ बॉयफ्रेंड। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर तब आया जब पुलिस वाले को पता चला कि यहाँ कोई तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जो प्रोफाइल्स हैं ये AI जनरेटेड और इंटरनेट से चोरी हुई वाली प्रोफाइल थी, यानी कि इसके पीछे हो सकते हैं साइबर ठग्स। तो आज की स्टोरी आपको ये बता दी है कि इस तरह के किसी भी स्कैम में मत फंसिएगा। अगर आपको कोई पार्टनर बनाना है तो वर्चुअल वर्ल्ड से नहीं, रियल वर्ल्ड से बनाइए। और अगर आपको कोई कहता है ना कि चलिए बॉयफ्रेंड डेट पर चलकर एक डेट करता है, तो भाई उस पैकेज को बिल्कुल भी मत लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दें और खुद ही अपने आप को साइबर क्राइम का पार्ट बना लें। तो ऐसी चीजों से रहिए अवेयर और साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

हाँ जी, तो चलिए डू यू नो से सीधा चलते हैं डिड यू नो पर। और डिड यू नो पर जाने से पहले ना, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रात को सपने देखते हैं लेकिन सुबह उठ कर ना वो सपने ब्लर हो जाते हैं। मेरे साथ तो खासकर ऐसा होता है, कभी कभी ना मुझे सपनों का पूरा प्लॉट याद रहता है लेकिन मैं कैरेक्टर्स इधर उधर कर देती हूँ। तो मेरी तरह ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रात को हसीन सपना तो देखते हैं लेकिन जब भी सुबह आंखें खुलती है ना तो ऐसे लगता है कि कुछ तो था जो आप पता नहीं कहाँ गए। तो भाई देखिए, अब इसके पीछे भी एक साइंस है। यहाँ पर साइंस अपनी गुगली फेंक कर कहता है कि जब भी आप सपने देखते हो, स्पेशली जब भी आप रेम स्लीप में होते हो, रेम स्लीप में जुड़ा हुआ कोई भी सपना आपके ब्रेन प्रोसेसर तक पहुँचता ही नहीं है क्योंकि उस वक्त होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर हमेशा लो एक्टिविटी में। और यही रीजन है कि हमें अपने सपनों की इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक याद ही नहीं रहती क्योंकि हमारी मेमोरी में वो स्ट्रांगली फीड ही नहीं होती। तो देखिए, आप जब भी सपने देखे और अपने सपने भूल जाना तो अपने आप को ना प्रेशराइज मत कीजिएगा कि क्या सपना था। बस ये सोचेगा ओ मैं रेम स्लीप में था, और बस फिर से ना वो सपना दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। और पता है यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात भी है, और इंटरेस्टिंग बात ये है जब भी आप सपने देखते हैं ना तो तुरंत उठने के बाद ना कुछ भी काम मत कीजिए, उस सपने को याद करने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो सपने आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। और अगर इसके अलावा आपने फोन इस्तेमाल कर लिया, आपने किसी से गुड मॉर्निंग कर दिया ना, तो आपका सपना होने लगता है धीरे धीरे फिर। तो भाई अगली बार जब भी आप कभी सपना देखे हैं तो सबसे पहले सपने को चेज कीजिए, फोन को नहीं। मैं तो ना सपने खुद बना भी लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करती हूँ। गया तो गया सपना, फिर से बना लेंगे, अपना ही तो है। वाह, सपना अपना ही तो है। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक जो आपका है, और मिलते हैं कुछ ही देर में।

0: सामने हो।
1: फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था, पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14।

चलिए तो फिर वक्त हो गया थोड़ी सी इनकम बढ़ाने का, यानी कि बिजनेस बस का। और देखिए यहाँ पर ना कुछ स्टार्टअप आइडियाज लेकर आती हूँ, तो आज भी लेकर आ गई हूँ आपके घर का एक छोटा सा बिजनेस आइडिया। तो देखिए आजकल ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि हेल्दी स्नैक्स जिनके अंदर आती है होममेड नमकीन, कुकीज हो गए और अचार भी आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर इनको बेचेंगे कैसे। तो भाई देखिए सिंपल सा आइडिया है, तो भाई आपने करना क्या, आपने अपने एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप को अपना मिनी मार्केट बनाना है, 4 से 5 प्रोडक्ट रखने हैं, अच्छी फोटोज क्लिक करनी है, एक सिंपल सा प्राइस लिस्ट बनाना है और बस अपने नेबरहुड में ना ऑर्डर्स लेने स्टार्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, शॉप का रेंट भी नहीं लगेगा और अगर टेस्ट और सर्विस अच्छी निकली ना तो फिर देखिएगा ये जो 5 कस्टमर्स है ना स्टार्टिंग के, किस तरह से 50 कस्टमर्स बन जाने हैं। तो ये थी आज की बिजनेस टिप। और याद रखिए पहले दुकान मत खोलो, पहले डिमांड चेक करो और जब डिमांड हो जाए ना आपके प्रोडक्ट्स की तो फिर दुकान भी खोल लेना। इस तरह से बनता है एक छोटा सा आइडिया बड़ा ब्रांड। तो अपने इस छोटे से आइडिया को आज ही बड़े ब्रांड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और साथ ही एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular, pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड। डॉक्टर कॉलिंग।

चलिए फिर आज का सोशल स्यापा हो ही जाए। और आज का सोशल स्यापा ना अपने साथ एक इमोशनल स्टोरी लेकर आए। ये इमोशनल स्टोरी सोशल मीडिया पर इन दोनों बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और ये कहानी है एक आर्मी पर्सनल की। कहा जा रहा है ये जो आर्मी पर्सनल है इनकी पोस्टिंग किसी रिमोट एरिया पर हुई, जहां पर इनके पास कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था। तब इन्होंने ATM से रोज 100 रुपए विड्रॉ करना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज 100 रुपए क्यों विड्रॉ करने, इसके पीछे का रीजन क्या? तो जब आप रीजन सुनेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बताया जा रहा है इनका अकाउंट इनकी वाइफ के मोबाइल नंबर से लिंक था। तो हर बार जब भी ये 100 रुपए विड्रॉ करते थे ना, वाइफ को मैसेज मिलता था। अब वो SMS उनके लिए था एक मैसेज कि मैं सेफ हूँ। तो भाई देखिए, तो ये कहानी ना हमें ये बताती है कि डेली आई लव यू कहने से बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ ये फील कराना अपने पार्टनर को आई एम ओके। और जब आपके पार्टनर को ये पता चलता है ना कि आप ओके हो, वो भी इस जगह पर जहाँ पर वो आपसे बात नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए इससे ज्यादा बड़ी चीज उनके लिए कुछ नहीं होती। तो देखिए आज का सोशल स्यापा बहुत ही इमोशनल था। और यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ है ना, तो उन्हें डेली फील कराइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। I'm a

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।

हेलो हेलो जी, वेलकम बैक है जी, वेलकम बैक है। और देखिए फिर से आ गई हूँ मैं, और अब आई हूँ तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने वाली, कुछ ना कुछ तो जरूर जान कर जाऊंगी ना। और देखिए अब टाइम हो गया कि आज मैं टिफिन में क्या लेकर आई हूँ ये पूछने का और ये बताने का आपको। तो आज के मेरे टिफिन में है वेजिटेबल पोहा, और उसी के साथ ना मैं फ्रेश फ्रूट्स लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था ना कि खुद को फिट कैसे रखना है, और फिट फरीदाबाद बनाने के लिए ना पहले मुझे खुद को फिट रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मंडे स्टार्ट हो चुका है, और अगर वीक डेज में कुछ हेल्दी खाएंगे ना तभी वीकेंड तक जाकर कुछ जंक खा पाएंगे। तो भाई देखिए मेरा मंडे तो स्टार्ट हो गया है, अब आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आज आप अपने टिफिन में क्या लेकर आए। और अगर घर से कोई इडली सांभर या फिर सैंडविचेस लेकर आए ना आज, तो आपको बताया ना कहाँ जाना है। आपको जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर फटाफट से भेजना है कि आज आप अपने टिफिन में क्या लेकर आए। अगर कुछ हेल्दी और टेस्टी सा है ना तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, सुबह 7 बजे आई थी, अब 11 बजने वाला है। बहुत सारी बातें मैंने आज आपके साथ की है, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आज आऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

में उठ रहे हो, जिनके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जिनके लिए आप दिन भर मेहनत कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करना चाहते हो या अपने आप को उस पोजीशन पे देखना चाहते हो। और एज अ वुमन, अगर मैं से एक नारी की बात करूं तो वो नारी के जो सपने है ना, वो अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। बट अब की जो नारी है वो ये नहीं कहती है, वो कहती है मैं अपने सपनों को भी प्रायोरिटी दूंगी और साथ ही साथ अपने जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें भी प्रायोरिटी दूंगी और इनका एक बैलेंस बना के लाइफ में चलूंगी। तभी तो हम उसको कहते हैं कि नारी जो है वो है नारी नंबर 1। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती है। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए। मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का, अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे। तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही है, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि, और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कंसल है और मैं एक सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हूं और मैं फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हूं। तो आज मैं बताना चाहूंगा ब्लड कैंसर अवेयरनेस के बारे में। सितंबर का महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा। अगर किसी का खून बार बार कम हो रहा है या किसी का खून बहुत ज़्यादा है या किसी का TLC काउंट जो होता है वो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है या प्लेटलेट जो सफ़ेद पेशियाँ होती हैं वो बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है ब्लड कैंसर का। या किसी को लंबे टाइम से पसीने आना या वजन कम हो जाना बहुत ज़्यादा या भूख नहीं लगना या बुखार आना रात को या किसी के जोड़ों में दर्द रहना, लाल चपटे पड़ जाना स्किन पे, ये एक ब्लड कैंसर का साइन हो सकता है। धन्यवाद।

एक महिला ना पूरा संसार बदल सकती है, संसार क्या आप सबके माइंडसेट भी बदल सकती है अगर उसने ठान लिया। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो वुमेन की हम बात करने वाले हैं, शी चेंज द वर्ल्ड, नहीं, शी हैव

साल पहले एक अपार्टमेंट में आग लगती है और वहाँ आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। लगभग 70 लोग वहाँ पर फंसे होते हैं। उस बीच में ये एक महिला है जो उसी बिल्डिंग में काम करने जाती थी लोगों के घरों में, बट वहाँ पर इसने कहा नहीं, मैं आज इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वो सिर्फ 17 साल की थी और नाम था करीना थापा, और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ये एलपीजी ब्लास्ट था जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लगी थी, और ये वहाँ गई और जितने भी लोग वहाँ थे उनको वहाँ से सेफली निकाल के बाहर लेके आई। लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की जान इन्होंने अकेले वहाँ पर बचाई थी। तो और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इन्हें बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और ये बाल पुरस्कार उनको मिलता है जिन्होंने छोटी उम्र में कुछ ऐसा कर दिया होता है जो शायद सोसाइटी के बड़े बड़े लोग भी सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो सोच है ना इनकी कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, वहां से उनको बचा के लाओ, क्योंकि मैं तो सेफ हुई, मुझे पता है कि कहां से किसको कैसे निकाल के आ सकते हैं क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में डेली काम करने जा रही हूं, तो उसको उन्होंने बहुत ब्रेवली वहां पर यूज किया और सब लोगों को सेव करके बाहर लेके आई। शी हैव सेव्ड द पीपल, शी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, शी हैव चेंज्ड द माइंडसेट। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए

भाई ये चाइना वाले बीच बीच में ऐसी चीजें कहां से ढूंढ के ले आते हैं गुरु, मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चले जाती हैं कभी कभी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और चाइनीज वुमेन्स ने एक ऐसी चीज ढूंढ के निकाली है, ये कह रही है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस में रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी स्किन का और अपना जो लुक है उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे, और ये हम टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से हम थोड़े से डल दिखने लग गए हैं, वर्किंग आवर्स में बहुत इन्वॉल्व रहने गए हैं। तो अब हम वर्किंग आवर्स में ही ये सब करा करेंगे, तो वहां पर काम क्या करेंगे आप, ये डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम एक फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाए रहेंगे, सनग्लासेस लगाए रहेंगे, हैट लगाए रहेंगे।

भी आसपास की चीजें हो वो हमें इफेक्ट ना करें, और ये हम लगाए कि तब हम काम करेंगे। हम ये तो कह नहीं रहे हम काम नहीं करेंगे, बट हमें ये सब लगाना अलाउड कर दिया जाए कि हम ये सब लगा के वहां पर काम करेंगे, तो हमारी स्किन जो रूटीन है वो भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ आपका काम भी होता रहेगा। हम आपका काम डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं कह रहे। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वैसे भी जब हम ऐसे किसी चाइना के इंसान से मिलते हैं ना, मोस्टली फेस वहां पर जो है वो सिमिलर नजर, उसके ऊपर भी आप मास्क लगा लेंगे एक ही कलर के, अगर एक रो में पांच लगा के बैठ गए तो बॉस आके पहचानेगा कैसे कि ये इंसान ये है, ये इंसान ये है, ये इंसान ये है। कुछ तो बॉस के बारे में भी सोचो यार आप लोग। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, तो महिलाओं के थोड़े से हक की बात और कर ले और महिला को थोड़ा सा और उनके ही राइट्स के बारे में नॉलेज दे ले। 89.6 रेडियो महारानी और तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और आज जो मैं राइट की बात करने जा रहा हूँ, हर महिला को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है, राइट टू पे इक्वल। अब यहाँ पर आप जब डेट पे जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको इक्वल पे करना, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राइट टू पे इक्वल से होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जितनी सैलरी आपके उस लेवल पे एक मेल एम्प्लॉय को मिल रही है उतनी ही आपको भी मिलनी चाहिए। पे इक्वल यहां से हम रिलेट कर रहे हैं, जितना काम आप कर रहे हो अगर सेम एक कोई मेल कर रहा है, जितनी जिम्मेदारी आपके पास है उतनी ही एक मेल एम्प्लॉय के पास है, और जिस लेवल पे आप हो और उसी लेवल पे वो मेल एम्प्लॉय है, मतलब सब इक्वल होगा तो सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं, अब ये हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो किसी कंपनी में और आप अभी आए हो तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचो और आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजों आपको मैच करनी है। ये नहीं कि आप भी डायरेक्टर पोस्ट पे गए, वो भी डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो आप कहो नहीं मुझे इक्वल सैलरी चाहिए। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है, बट आप भी उतने ही एक्सपीरियंस हो, 6 साल वो भी 6 साल एक्सपीरियंस और सेम पोस्ट पे हो, देन यू कैन फाइट फॉर योर राइट कि मुझे भी इतना पे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। तो राइट टू पे इक्वल का सिंपल ये मतलब है। और बाकी अगर आप अच्छा कमा रही हैं तो डेट पे जाइए तो वहां भी पे इक्वल कर लिया करिए, थोड़ा मेन का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बी अ स्मार्ट वुमेन वाला एक कदम उठा लीजिएगा और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिएगा।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

एक आदमी को ना बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें वो छोटी छोटी चीजें चाहिए और वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाने वाले हैं। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अब आप बोलोगे ना वो छोटी छोटी चीजें क्या है। देखिए वो छोटी छोटी चीजें ये हैं कि जैसे किसी इंसान को घड़ी पसंद है तो नॉट बहुत महंगी, बट आप उसे कोई नॉर्मल घड़ी भी ला के दे दोगे ना जब उसका कोई स्पेशल डे आ रहा हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो ये एक छोटी वाली खुशी। कई लोग मेंस होते हैं जिन्हें डीओ बहुत पसंद होता है, डीओ का अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो वो एक छोटी डीओ की बॉटल भी उनको ला के दे देंगे, नॉट सो एक्सपेंसिव। मैं एक्सपेंसिव डीओस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। शूज का कलेक्शन, ऐसे मेंस की बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बहुत सारे मेंस होते हैं जिन्हें अपने जूतों से बहुत प्यार होता है, तो उनकी जूते जो होते हैं ना उनसे अपना आप डिस्टेंस बना के रखिए। ये नहीं कि जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, भाई ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत हर्ट कई बार कर जाती हैं। तो अगर आपको पता है आपके मेन को क्या पसंद है, तो पहले तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक मेन के बारे में, तो जो उसे पसंद है उसकी उस चीज का अगर आप टेक केयर कर लोगे ना तो मेन से बढ़िया इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी उस चीज की केयर कर लो जो उसे सबसे पसंद है, बस दैट्स इट। अगर उसे खाना पसंद है तो उसे अच्छा खिला दो तो वो सबसे खुश रहने वाला। तो आपको अब फिगर आउट करना है आपका जो मेन है उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, और उसके लिए वही हर थोड़े थोड़े टाइम बात करते रहो तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी लव लाइफ है वो बेटर चलती रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm-up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था। तो लोग तब लगाते थे, फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को वो पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
1: रिका, ऊ,

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: 106 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आज की जो नारी है ये भी मल्टीटास्कर हैं और बहुत सारी चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: हाय तुषार, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
0: बिल्कुल, और ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आप बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, मैं उसके बारे में और वहां से ही जर्नी को स्टार्ट करना चाहूंगा। एक लॉकडाउन से पहले, एक लॉकडाउन से बाद, ये दो फेसेस वाली जो स्टोरी है। सबसे पहले तो पहले वाले चलते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री से आप एसोसिएटेड हैं, लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैवल गाइड करना प्लस उनकी जर्नी प्लान करके देना, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि ऐसा कुछ करते हैं?
1: देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री से ही मैंने अपना करियर शुरू किया। जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री ही थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद ऑब्वियसली मेरे लिए एक शॉक था क्योंकि सबसे ज्यादा लॉकडाउन पे ही अफेक्ट आया था। बंद हो गई थी, सारी कंपनीज बंद हो गई, मेरे लिए भी एक बहुत शॉकिंग सिचुएशन थी कि ये क्या हो गया है। बट मैं बहुत नेगेटिव नहीं हुई, मैंने कुछ चीजें पॉजिटिव वे में भी किया। मैं फिटनेस से बहुत, मेरा पैशन है फिटनेस, तो मैंने और मेरे अंदर एक ये चीज है कि जब भी मैं स्ट्रेस आउट होती हूँ ना तो मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं एरोबिक्स करती हूँ और इससे मेरा ना स्ट्रेस कम हो जाता है। जब मैं अब जॉब तो थी नहीं, वर्कआउट मैं कर रही थी, तो मेरे माइंड में कुछ चीजें आई कि व्हाई नॉट फिटनेस, आई कैन गो विथ फिटनेस ऑल्सो। तो फिटनेस में मैंने सर्टिफिकेशन किया, मैंने CPT ट्रेनिंग ली जिसमें सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, उसके बाद मैंने एरोबिक्स ज्वाइन करा, एरोबिक्स की सर्टिफिकेशन की। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी सिचुएशन जब नॉर्मल होने लगी तो ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट किया एंड देन जिम में जाके बात की लोगों से।

0: में कन्वर्ट किया और अपनी जर्नी यहीं से शुरू कर दी फिटनेस को लेकर।
1: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

0: इट्स रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये दो अलग, एक ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट और फिटनेस इज डिफरेंट, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं शायद हम वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ ये दोनों चीजों का बैलेंस आप कैसे करके चल रहे हो कि वो भी मैनेज करना और प्लस फिटनेस भी मैनेज करना।
1: देखिए इसमें मैनेज नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चल रहे हैं। कई बार होता है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अपने आप को भूल जाते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। कि ऑटोमेटिकली ये होता है कि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत सोचना।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें, अपना जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: 106 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर है। मैंने थोड़ा सा जब आपके बारे में रिसर्च करा या आपके बारे में पढ़ा, आप बीइंग अ मदर, आप मदर हैं और उसके बाद आप ट्रैवल इंडस्ट्री प्लस फिटनेस, तो कितना ये मुश्किल हो जाता है कि फैमिली के साथ ये दोनों चीजें भी बैलेंस करनी है। ये आपका स्टार्टअप है, इसे भी टाइम देना है, प्लस फैमिली या जो चाइल्ड हैं उन्हें भी उतना टाइम देना है।
1: देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था, जब सिचुएशन नॉर्मल हुई मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मैं अपना फिटनेस में शुरू कर दूंगी तो मैं वापस ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। हाँ। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊंगी ये मैंने सोचा था, क्योंकि वो मेरा करियर है एंड मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से की थी। अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो मैंने वापस से ट्राई करना शुरू कर दिया ट्रैवल इंडस्ट्री में। मैंने कंपनी ज्वाइन की बाय द नेम ऑफ TNE, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम इसमें कस्टमाइज करते हैं पैकेजेस एंड हम ग्रुप ट्रैवल्स भी कराते हैं। इधर मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लेके गई, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फैमिली, और मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को आप देखो लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करो, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी।
0: 100% मैं यहीं पर, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल उसमें है तो आपने एक्सप्लोर किया होगा, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं या लिस्ट में है कि यहाँ एक बार और एक्सप्लोर करने जाना है?
1: मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा भी नहीं करती क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑपरेशंस देखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भेजती है, इवेंट्स मैनेज करने के लिए भेजती है। बट हाँ, मैं अभी एक ग्रुप लेके गई थी केरला फॉर 100 पीपल, और अपना जो लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ बताने गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ, मेरे को अगर ट्रैवल करना है तो मुझे यूरोप ट्रैवल करना है एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल पैरिस एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवल जापान ऑल्सो, बिकॉज मेरी बड़ी डॉटर जो है शी इज फॉन्ड ऑफ जापान एंड कोरिया।
0: Okay.
1: तो हाँ, ऑब्वियसली यहाँ जाना चाहूंगी मैं।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: 106 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, आज की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए अपने पैशन को फॉलो करना, एक प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग कहीं बार हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ से अगर कोई गाइडेंस आज उन्हें देना चाहें।
1: देखिए, मैं मानती हूँ बहुत चैलेंजिंग होता है, आई नो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी में रखना सेल्फिश नहीं होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आप अपनी लाइफ को जैसे बैलेंस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बच्चे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए सब, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपने पैशन को जरूर फॉलो करो, वो बहुत जरूरी है। अपने पैशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। तो जैसे मैंने लॉकडाउन में किया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया उस चेंज को, मैंने पॉजिटिवली उसको फॉलो अप किया और मैंने अपना फिटनेस में भी करियर बनाया।
0: अभी फिटनेस का हम लोग जो चला रहे हैं वो कैसे सेशंस लेते हैं या कैसे हम अपना डे आउट प्लान करते हैं?
1: देखिए, मैं एरोबिक्स क्लासेस लेती हूँ, आई टेक क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो, आई टेक क्लासेस इन जिम ऑल्सो। हाँ, मेरी पूरा वर्किंग रहता है, लेकिन आई टेक इन मॉर्निंग बैचेस लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो
0: कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? ऑनलाइन क्लासेस पे वैसे
1: मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस विद आयुषी, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: इट्स रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारे शो का नेम है नारी नंबर वन। नारी हर आगाज में आ गया, जैसे आप भी 100 लोगों का एक क्रू लेके जाना, प्लस लॉकडाउन के टाइम एक नई चीज को एक्सप्लोर करना कि मैं इसमें भी एक्सीड कर सकती हूँ। ट्रैवल बिजनेस, क्योंकि हमें मालूम उस टाइम ट्रैवलिंग पूरी तरह से ही बंद था कि हमें कहीं नहीं जाना है, तो उस टाइम के वो चैलेंजेस और सारी चीजों को लेके। तो ऐसे बहुत सारी और नारी हैं जो बहुत अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग तरीके से चैलेंज करती हैं। तो जब वो चैलेंज उनके सामने आ रहा है, तो उस टाइम उन्हें अपने माइंडसेट को या क्या एक ऐसी पॉजिटिव डोज खुद को देना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगी तो ये होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव जो आपके लिए मंत्रा रहा हो।
1: देखिए, लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक लेडी के लिए। घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, जॉब करना, घर के काम होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसको पॉसिबल बनाना ना सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल तो आता है और बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आप वो चैलेंज को फेस करो, आप करो, आप मेहनत करो। थोड़ी सी जर्नी आपकी ज़रूर स्लो होगी, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने के लिए। तो आप यही करिए कि आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे, सेल्फ बिलीव रखेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने के लिए।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: छक्के 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आज के अगले 2 घंटे हम रखेंगे एकदम लाइट, कैजुअल और फुल एंटरटेनमेंट वाला। मैं हूँ आरजी पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके पर, जहाँ बातें होंगी मूवीज की, सॉन्ग्स की, ओटीटी की और थोड़ी सी फिल्मी दुनिया की। तो बस आराम से बने रहिए मेरे साथ, आपकी कंपनी हो और फिल्मी बातें, फिर और क्या चाहिए यार मुझे। लेकिन बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो कैरेक्टर हम घर बैठे टीवी या फोन स्क्रीन पर देखने के आदि हो गए हैं, अगर उन्हें बड़े पर्दे पर देखें तो कैसा लगेगा? मिर्जापुर द मूवी के बाद अब एक और पॉपुलर ओटीटी फ्रेंचाइज को फिल्म में लाने की प्लानिंग की बात सामने आ रही है, जिसका नाम है द फैमिली मैन। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज बाजपेयी का करेक्टर श्रीकांत तिवारी अब बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकता है और मेकर्स के अकॉर्डिंग फिल्म बनाने का आइडिया पहले से ही डिस्कशंस में था, यानी इसका प्लान मिर्जापुर की मूवी की सक्सेस के बाद नहीं बना है, लेकिन उससे पहले फोकस रहेगा द फैमिली मैन सीजन 4 पर और इसका बेसिक स्टोरी बोर्ड रिपोर्टेडली रेडी है और सब ठीक रहा तो शूटिंग 2027 के बिगिनिंग में स्टार्ट हो सकती है। मतलब श्रीकांत तिवारी के नॉर्मल फैमिली मैन और सीक्रेट एजेंट वाले डबल लाइफ को थिएटर स्क्रीन पर देखना, ये आइडिया सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल फिल्म को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं और ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट आपको अभी करना पड़ेगा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benivar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.

0: फ्लेवर।
1: अच्छा सलमान के सामने अगर कोई एक्टर नेगेटिव रोल में खड़ा हो तो स्क्रीन पर टक्कर देखने में मजा तो आएगा ही ना। सलमान की अपकमिंग फिल्म मॉन्स्टर को लेकर कास्टिंग से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ एक्टर अरविंद स्वामी फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं और उनका रोल नेगेटिव शेड में हो सकता है। और इन एक्टर को आपने रोजा, बॉम्बे और ध्रुवा जैसी फिल्म्स में देखा ही होगा और रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्होंने मुंबई में शूटिंग स्केड्यूल कर दी है जहां टीम एक्शन सीक्वेंसेस पर काम कर रही है। और अगर अरविंद स्वामी विलन के रोल में है ना तो भाई सलमान वर्सेस अरविंद स्वामी का फेस ऑफ स्क्रीन पर हुआ तो एक्शन का टेम्परेचर तो बढ़ना ही है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉन्स्टर के थ्रू अरविंद स्वामी लगभग 10 साल बाद हिंदी सिनेमा में वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी लास्ट बॉलीवुड फिल्म डियर डायरी 2016 में देखने को मिली थी और ये मूवी नेक्स्ट ईयर ईद पर रिलीज होने वाली है। अब देखना ये है कि सलमान और अरविंद की ये टक्कर स्क्रीन पर कितनी पावरफुल होती है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

सिनेमा का कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, एक एक्टर जब 2 साल तक स्क्रीन से गायब रहे तो कमबैक से ज्यादा एक्साइटमेंट उसके नेक्स्ट लुक की होती है ना। पुष्पा 2 के बाद से अल्लू अर्जुन बड़े पर्दे से दूर थे, लेकिन अब उनकी अपकमिंग फिल्म राका को लेकर एक फ्रेश अपडेट सामने आई है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एटली, जिन्होंने शाहरुख के साथ जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। और अब एटली और अल्लू अर्जुन का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मेकर्स ने फिल्म का एक नया टाइटल पोस्टर शेयर किया है और बताया है कि दिसंबर 2026 में राका की दुनिया की पहली झलक ऑडियंस को देखने को मिलेगी। अब ये टीजर होगा, प्रोमो वीडियो होगा या कुछ और, मेकर्स ने अभी ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन फिल्म को फैंटेसी, साइंस फिक्शन और एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है। और अल्लू अर्जुन का एक ऐसा अवतार देखने को मिलने वाला है जो उन्होंने पहले कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाया। मतलब पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन का नेक्स्ट अवतार दिसंबर में देखने को मिलेगा, और वो भी फुल मिस्ट्री के साथ। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक, आप सभी के साथ, और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।
2: What's up, dog?
3: Shit, brother, shooting in the wind. What's good with it?
2: Watch out, man. Watch out, Dil G coming, man.
3: Oh, word. They say he the GOAT. He all the way tapped in.
2: Yeah, dog. He killing the game.
3: Oh, Dil G, Dil G. Watch out.

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।
5: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: चला तो गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि हम उसको कितनी बार भी सुन लें बोर बिल्कुल नहीं होते। और ऐसा ही एक सुपर हिट ट्रैक है, प्यार दिलों का मेला है, सलमान और करिश्मा कपूर की फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से। डेविड धवन की ये फिल्म 2000 में आई थी, लेकिन इसका ये गाना ना आज भी स्पेशली यंग लिसनर्स के बीच छाया हुआ है। और अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में ये सॉन्ग फर्स्ट लव वाली फीलिंग को परफेक्टली कैप्चर करता है। वो एक्साइटमेंट, वो बटरफ्लाईज और वो थोड़ी सी बेचैनी, और जब दिल को खुद समझ नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है यार। और हाँ, स्क्रीन पर सलमान और करिश्मा की केमिस्ट्री और साथ में उनका डांस, भाई मतलब गाना पुराना हो सकता है लेकिन वाइब बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। और अब गानों की बात मैंने कर ही दी है तो वक्त हो चुका है गाने का। एंजॉय कीजिए ये गाना और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अगर किसी गांव में आज तक एक भी पुलिस केस ना हुआ हो तो ऑब्वियसली वहाँ सब कुछ बड़ा पीसफुल होगा ना। लेकिन एक सेकंड, धुपैया सीजन 2 में धड़कपुर के ये पीस अब थोड़ी हिलने वाली है। पिछले साल ऑडियंस को अपनी सिंपलिसिटी और कॉमेडी से एंटरटेन करने वाली ये सीरीज अब नए सीजन के साथ वापस आ रही है और ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। और इस बार गांव में खेतों में मोबाइल टावर लगने की होड़ मच गई है। और बस इसी चक्कर में एक नया कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है। मतलब जहां पहले क्राइम के नामों निशान नहीं थे, वहां अब ड्रामा फुल ऑन होने वाला है। गजराज राव, रेणुका शाह ने स्पर्श, भुवन अरोड़ा और यशपाल शर्मा के साथ इसी सीजन में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ की भी एंट्री हुई है भाई। और ये सीजन 2 आपको देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो धड़कपुर में मोबाइल टावर लगेगा या नए लफड़े, ये तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सनडाउनर विद

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा सोचो आप एक सीक्रेट मिशन पर इंडिया आए हो, लेकिन बीच में आपकी मेमोरी ही चली जाए और आपको याद ही ना रहे कि आप एक्चुअली में हो कौन। बस इसी क्रेजी सिचुएशन के अराउंड है आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म उड़ता तीर, और फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें आयुष्मान पाकिस्तानी स्पाई बिलाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो एक सीक्रेट मिशन पर इंडिया भेजे जाते हैं। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद बिलाल की मेमोरी चली जाती है और वो खुद को इंडियन समझने लगते हैं। अब एक तरफ है सीक्रेट मिशन और दूसरी तरफ है नई आइडेंटिटी और बीच बीच में कॉमेडी और कंफ्यूजन का पूरा डोज। और इस फिल्म में आयुष्मान के साथ सारा अली, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर, राहुल बोस और लेट एक्टर मुकुल देव भी इम्पोर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। पहले ये फिल्म 23 सितंबर को यानी कि 23 ऑफ सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उड़ता तीर 9th ऑफ अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर को थिएटर्स में आप सभी को देखने को मिलेगी। मतलब मिशन तो सीक्रेट है लेकिन ट्रेलर ने स्टोरी का कंफ्यूजन पब्लिक कर दिया है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक, आप सभी के साथ शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एजुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी, इसी के साथ आज के फिल्मी फ्लेवर को यहीं शट डाउन करते हैं। अच्छा, आज हमने फिल्मी दुनिया के कई सारे किस्से जाने, कुछ नए अपडेट्स मिले और बॉलीवुड से जुड़ी काफी सारी बातें हुई। अब इसी के साथ मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं ना, अभी जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी कुछ नए फिल्मी अपडेट्स और नए किस्सों के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ये गाना और स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी को छटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यार।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सैवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा,
4: काना भूत हूँ।
5: काना भूत नहीं होते, अच्छा तुम यहाँ पर रहने आए हो।
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो आए।
2: राज, मस्ती मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
4: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा।
2: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाबूजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
6: जा सिमरन, जा, जा जीले अपनी जिंदगी।
2: इसलिए कहते हैं

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
2: देखो बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
3: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
4: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
3: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
5: जब मैं 2 साल का था मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
2: चली गई?
5: मैं भाग गई।
2: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
3: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता। पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: दरिबा, बड़े वफादार है आपके आंसू, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
3: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियां अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात।

0: वीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

चाहिए वहीं से है तू ठीक, न नजरों में आ न मुझको तू देख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा लेके ही तो लिख, बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच, बोलू मैं थोड़ा रिया नहीं टच, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच, बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ, BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, शराब बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती है। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली कब मेरी बस आ गई।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: एक तो ये सैटरडे वाला मौसम जाने का नाम ही नहीं ले रहा है और बार बार लौट कर फिर से वापस आ रहा है और हमको बहुत कुछ याद दिला कर जा रहा है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? देखो मेरे को पता है अच्छे होंगे, बट कल वाला मैच देखने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छे हो गए होंगे, क्योंकि विराट कोहली, नाम में विराट है तो नंबर्स भी तो विराट ही होंगे, 139 रन्स करेंगे, इसके बारे में बात। और अब मैं आ चुका हूँ ना अगले चार घंटों के लिए आप सभी के साथ हूँ, खूब सारी हम लोग बातें करने वाले हैं, मस्ती भी होगी, गाने भी चलेंगे। और इसी बीच फरीदाबाद से रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी बात करनी है ना तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। कोई प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर नहीं लाइफ वाली प्रॉब्लम नहीं, फरीदाबाद वाली प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ फरीदाबाद के बारे में, कुछ बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक सिंपल से नंबर है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कीजिए और आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है, दोनों जगह पे। और मैसेज आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट है, जो भी इंसान मैसेज या वॉइस नोट भेज रहा है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नाम लिख के ज़रूर भेजिएगा। और इसी के साथ साथ ले ऑफ्स हो रहे हैं, पता आपको, जॉब जा रही है लोगों की, और बैंक 3 दिन के लिए बंद होने वाले थे बट कैंसिल हो गई वो हड़ताल। करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और इसी के साथ साथ भड़कल झील की लेटेस्ट वीडियो देखी आप लोगों ने? इतनी ज़्यादा साफ हो गई है पानी, बिल्कुल बिल्कुल मज़ेदार वाला लग रहा है पानी। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जो ये जलकुंभिया जमी हो रखी थी अपने आप हट गई वो, मतलब कोई मशीन नहीं चली उधर। लोग कह रहे हैं नहीं मशीन चली थी, नहीं चली मशीन, क्यों हटे हैं, कैसे हटे हैं, करेंगे इसके बारे में बात। एंड एक और चीज़, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज नेक्स्ट मैच कब है, करेंगे इसके बारे में भी बात। मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव आपके साथ, AI वर्जन गाना, और आप सुन रहे हैं शो HR 89.6।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

लोगों ने एक चीज बोलना शुरू कर दिया कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब जा रही है, जॉब मिल नहीं रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बट यहाँ पर एक आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात भी तो है ना, कि हम लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। आपके पास ये मौका है, क्योंकि जब कंपनीज निकालती है ना तो वो कुछ पैसा देकर ही निकालती हैं बाहर। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिंपल से बोल रहा हूँ कि जब कंपनी अपनी मर्जी से निकालती है ना तो 45 दिन का फुल एंड फाइनल करके देती है आपको। तो मतलब आपके पास एक रिजर्व में पैसा बच जाता है, फिर आप उधर काम कर सकते हो, कोई नई चीज़ पे वर्क कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो आपको खुद का काम शुरू करना चाहिए, जिस फील्ड में आप थे उसी फील्ड में। और इसके अलावा क्यों हो रहा है लेऑफ्स? किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो, या फिर विप्रो हो, TCS हो, सब कंपनीज से आपको पता छटनी की जा रही है। क्यों? AI मेरी जॉब खाए? ऐसा नहीं होता। देखो AI जो है ना, AI को आपको सीखना पड़ेगा, आपको काम निकालना चाहिए। मतलब AI से कैसे काम निकलवाना है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। और इसी चीज़ में बता दूँ आपको, जितनी भी दुनिया में कंपनीज है वो सारी कंपनीज अब जॉब्स कट कर रही है, क्योंकि वो काम AI से हो रहा है या फिर ऑटोमेशन से हो रहा है। और काफ़ी जगह पर ऐसा भी है, उन लोगों ने स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग हायर कर लिए थे, बट अब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और काफ़ी जगह पर ऐसा भी है कि डिमांड कम है, और इधर से हमारे पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोग एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। और इसके अलावा बिजनेस रिस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो हर जगह AI नहीं है, बट मोस्ट ऑफ देम में यही है कि AI पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, टीम को कम कर रहे हैं और रोज जो है वो ज़्यादातर AI के पास दे रहे हैं। बट मैं यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूँगा कि AI सारे काम नहीं कर सकता। AI से हम वॉइस ओवर करवा सकते हैं, बट वॉइस ओवर में वो फीलिंग जो होती है ना, वो शायद नहीं आ सकती जो मैं और आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरी जॉब AI तो नहीं खा सकता, और भी ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो AI बिल्कुल भी नहीं खा सकता। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग भी ज़रा सोचिए कि कौन कौन सी जॉब्स है जो AI नहीं खा सकता, आप उसको करना शुरू कीजिए। और हो सके तो आप अगर IT फील्ड से, तो आप AI में मास्टर कीजिए, और फिर उसके बाद आपकी जॉब कोई और नहीं ले जा सकता। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना रेडियो महारानी।

सच सच बताना कि आप लोगों को नहीं लग रहा आजकल सुबह और शाम को थोड़ा ठंडक ठंडक सी हो रही है हर जगह, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना सा हो गया है। और आज का मौसम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है सुबह से ही, और जो दिन में ड्रिजलिंग हुई ना उससे तो मज़ा सा ही आ गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड ये जो आज का मौसम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ आप सभी के साथ बोलना चाहता हूँ कि इस हवा में फेस्टिविटीज़ की महक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि वो मौसम फिर से आ गया जब कंबल तो नहीं बोलूँगा, अभी चादर बोलूँगा, चादर से एक पैर बाहर निकालते हैं एक पैर अंदर रखते हैं और मौसम और भी ज़्यादा औसम होने वाला है कुछ दिन में। वेदर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट आपको नहीं लगता डांडिया और गरबा की रातें बहुत ही नज़दीक आ रही है? और आप सभी को बता दूं, रेडियो महारानी भी बहुत सारी जगह पर एज अ पार्टनर, एज अ रेडियो पार्टनर बोलूँगा, या फिर मैं बोलूँ एज एन ऑफिशियल रेडियो पार्टनर डांडिया और गरबा नाइट्स में पहुँचने वाला है। तो आप सब भी अगर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कहीं पर तो आप हम तक रीच आउट कीजिए, नंबर है हमारा 9654896896। हम लोग मिलकर ना ये डांडिया नाइट और गरबा नाइट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देंगे। मतलब आप लोग अपना इवेंट कराइए, हम लोग आके अपना काम करेंगे। और इसी के साथ साथ बता दूं आपको कि देखो फेस्टिविटीज़ की बात आई गई है तो मार्केट में भी दुकानों में रौनक लगनी शुरू हो गई है। कुछ लोग पटाखे लेने जा चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग आने वाले हफ्ते में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में। और आप लोगों की कितनी तैयारी है इस फेस्टिव सीज़न के लिए बताइएगा ज़रूर, हमारे इंस्टा हैंडल पर आकर रेडियो महारानी के नाम से बहुत ईजिली मिल जाएंगे। मगर उसी के साथ साथ आप सभी के लिए एक गाना भी चलाऊंगा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ। Mixing in the house.

क्या आप लोगों ने अभी रिसेंटली बड़खल झील देखी? और अगर नहीं देखी ना तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। वो पुरानी वाली खूबसूरती बड़खल झील की वापस ऑलमोस्ट आ गई है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। बड़खल झील की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने बात करी थी कि वहाँ पर जो पानी आ रहा है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए पानी वहाँ पर डाला जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एंड वहाँ पर मैंने देखा था कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि देखो ये पानी साफ नहीं है, आपके कपड़े धोने लायक नहीं है, आप इससे कपड़े धोएंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसी के साथ साथ फिर उसके बाद अगर आज की बात करें तो आज के दिन अगर आप जाकर अभी इस टाइम जा सकते हैं आप लोग बड़खल झील देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कितना ज़्यादा पानी साफ हो गया है। लाइक ऊपर से जो वो हाइसिंथ जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में HYACINTH, हाँ ये हिंदी में कहते हैं जलकुंभी, तो ये जो ऊपर से तैर रही थी ना कमल के फूल टाइप की, तो वो अब खुद से साइड हो गई है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मशीन चलाई गई थी, मगर मेरा एक दोस्त है वो वहाँ पर जाता है रोज़, तो उसने बताया मशीन नहीं चली। जो अभी कुछ दिनों पहले से हवा चल रही ना तेज़, तो उससे क्या हुआ, उससे पानी में वो करंट सा बना है, करंट मीन्स वो बिजली वाला करंट नहीं, लाइक पानी में फ्लो बना है, और उसकी वजह से जितनी भी जलकुंभियाँ थी वो एक साइड को चली गई है और पानी बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। और मैं तो बस ये वेट कर रहा हूँ कि कब इसमें जाके बोटिंग शुरू होगी। आई डोंट नो, मैं तो बस बोटिंग करना चाहता हूँ इधर। तो आप लोगों के भी मन में कुछ ना कुछ विचार होंगे कि बड़खल झील जब चालू हो जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के मन में, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और हाँ, एक और चीज़, मुझे लगता है कि फरीदाबाद में एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट बन जाएगा बड़खल झील, जैसे कि पहले हुआ करता था। पहले बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है, गानों की शूटिंग भी हुई है, बट अब मुझे लगता है फिर से वो दौर जल्दी ही आने वाला है। तो वो दौर कब आएगा वो तो हम देखेंगे, मगर उससे पहले गाना सुनेंगे रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना।

रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में काम करता है और वो इतना ज़्यादा खुश था पिछले अभी संडे भी नहीं बोलूँगा, वो इतना ज़्यादा खुश था कि छुट्टियों पर जाऊँगा मैं, लंबी छुट्टी पड़ने वाली है मेरी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो मेरा दोस्त है बैंक में है, और आपकी फैमिली में भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके मतलब मेंबर्स बैंक में होंगे या फिर किसी के दोस्त बैंक में होंगे, तो काम पे कभी उठाते नहीं है ये फ़ोन, कोई काम के नहीं है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको बेचारों को संडे को भी जॉब पे जाना पड़ा। तो उन लोगों ने बोला यार इस बार सैटरडे संडे जॉब पे जाना है, तो फिर उसके बाद 3 दिन की मेरे पास छुट्टी है और थर्सडे की मैं छुट्टी ले लूँगा, फ्राइडे की वैसी छुट्टी है, तो 5 दिन मैं घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो बैंक्स की हड़ताल होने वाली थी आज से 3 दिन तक, उसको डिले कर दिया गया और संडे को भी बैंक्स ओपन थे, तो इसकी वजह से उसको संडे को भी जाना पड़ा ऑफिस। और जब वो संडे को ऑफिस गया, उसको इतनी ज़्यादा खुशी थी ना उस चीज़ की, फिर जैसे ही खबर आई कि ये स्ट्राइक अभी के लिए कॉल ऑफ कर दी गई है, तो फिर उसके बाद उसका चेहरा उदास पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि ऐसा क्यों किया, मतलब अभी बैंक सारे ओपन थे कल 27 तारीख को और 3 दिन की बैंक स्ट्राइक होनी थी 28 से 30 सितंबर तक की, और इसमें क्या था, सिंपल सी बात थी, उन लोगों के अपने कुछ रूल्स थे जो कह रहे थे कि नेशन वाइड हम लोग 3 दिन की स्ट्राइक करेंगे और हम लोग ये चीज़ चाहते हैं सरकार से। तो सरकार ने बोला हम लोग इस पर बात करेंगे, बट आप एक काम कीजिए, आप लोग ना प्लीज़ 27 तारीख तक तो काम कर लीजिए संडे तक, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, वैसे भी मंथ एंड है किसी के पास पैसा तो है नहीं। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। बैंक की स्ट्राइक कैंसिल हो गई है, बट अब कब होने वाली है वो तो वक्त बताएगा, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर वक्त हो चुका है आप सभी के लिए गाना चलाने का। सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी पर मैं हूँ।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी ऐसा देखा है कि आप एक बहुत बड़ा कैश प्राइज जीत चुके हैं? बहुत बड़े से मेरा मतलब है कि 100-200 रुपए नहीं, 1000-2000 रुपए भी नहीं, 100-200 करोड़ रुपए आप लोग जीत चुके हैं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का, और हम लोग सपनों को डीकोड कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ मेरे को ये सपना आया कि ना ऐसा कुछ हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा कैश प्राइज जीत चुका हूँ और 200-300 करोड़ रुपए हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा। और दूसरा ऑप्शन भी था मेरे पास, और वो था कुछ और, उसको खैर इधर डिस्कस नहीं करते हैं। बट सपने में अगर आप लोग कभी अचानक से कुछ जीते हैं, आपको पैसे मिले सपने के अंदर, तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। हो सकता है कि आपको अचानक धन लाभ होने वाला हो, कहीं पैसा फंसा है आपका वो आ सकता है, या फिर आपने कहीं पैसे लगाए हैं वो चीज़ बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो बढ़ सकती है, और इसका मतलब है कि सक्सेस इज नियर। आपके जितने भी रुके हुए काम है ना वो सारे पूरे होने वाले हैं, करियर या फिर बिजनेस में एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, और हो सकता है आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। आपका जो वर्क प्लेस है या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसमें आपका रुतबा और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। अब इसके अलावा देखो, सपने तो बहुत कुछ बताते हैं, बट सपनों के अंदर एक साइकोलॉजिकल मीनिंग भी होता है। हो सकता है कि आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस है। अब पैसा हमेशा पावर और सेल्फ वर्थ को दिखाता है, उसका सिंबल है। तो अगर आपने ऐसा कुछ सपना देखा है तो मतलब सिंपल सा है कि आप खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, और फाइनेंशियल स्ट्रेस से आपको राहत मिल चुकी है, और इसी के साथ साथ अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने को पूरी तरह से तैयार है, और आप भी पूरी तरह से तैयार बैठे हो कि कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो मैं उनको ग्रैब क्या, मैं उनको क्रैक भी कर डालूंगा। और एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, देखो ये सपने बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल लाइफ में लॉटरी या फिर गैम्बलिंग में पैसा लगाने शुरू कर दो, ऐसा मत करना प्लीज़। और इससे अच्छा साइन मानो, और सिंपल सी बात है कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, कर्म करते जाओ, और आप देखना एक दिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक गाने चलते रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं हूँ गौरव आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम HR 896।

0: पेरेंट्स सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

क्या आप लोगों ने कल का मैच देखा? नहीं देखा क्या? अरे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अमेजिंग चीज आप लोगों ने मिस करी है। और उसके अलावा टीम इंडिया का आज भी मैच था। हाँ सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज भी टीम इंडिया का मैच था, बट वो था T20 मैच और वो था एशियन गेम्स मैन क्रिकेट 2026 के स्केड्यूल में, जो कि कॉल ऑफ हो गया है, जो कि मैच इज अबैंडन ड्यू टू रेन, कुछ हो गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एंड कल का मैच तो भुलाए नहीं भूलेगा कभी भी जिंदगी भर। और कल का मैच सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। 41.4 ओवर्स में 300 रन बना दिए। और जो मैच था अगर आपने नहीं देखा तो मेरे कहने पर एक बार, सिर्फ एक बार हाइलाइट्स देख लो, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं अगर आपने सच में नहीं देखा है तो। लास्ट बॉल पे छक्का मारना, जो कि विराट कोहली के बल्ले से ही आ सकता है, और लास्ट बॉल पे नहीं, सेकंड लास्ट बॉल पर भी छक्का मारा था विराट कोहली ने, तो मतलब छक्कों की तो बरसात कर दी थी। और कभी भी किसी ने भी विराट कोहली को ऐसे खेलते हुए तो नहीं देखा है। तो अब विराट कोहली ने जब कल अपना बल्ला चलाया है, उसके बाद सबके मन में एक ही चीज़ है कि ये विराट आज तक कहाँ थे। 139 नो डाउट। और अगर टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन दिखाया और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का भी प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि आप सभी को बता दूं 135 रन तक एक भी विकेट नहीं गिरी थी, और जब विकेट गिरनी शुरू हुई तो 288 पे 7 विकेट खत्म कर दिए थे। और यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, और उसी के साथ साथ कुलदीप यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस लड़के ने इतनी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। 4 विकेट लेके गए हैं कुलदीप यादव। और वहीं पर एक और बॉलर है हमारे पास, रेड्डी साहब, तो उन्होंने भी 1 विकेट लिए। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, टोटल 6 बॉलर्स के साथ टीम इंडिया खेल रही थी। और कल का मैच तो अमेजिंग था, बट उसमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग था कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं विराट कोहली ने, और कौन कौन से हैं वो रिकॉर्ड्स सब कुछ बताऊंगा मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी सुनते जाइए आप, मैं हूँ गौरव आपके साथ, एंड गाना तो आप लोग समझ ही गए होंगे।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

विराट कोहली के बल्ले से कल जो अमेजिंग शतक देखने को मिला है, उसके अलावा मैं अब कुछ भी नहीं देखना चाहता। 10 चौके 9 छक्के और आ जाने, मतलब कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, सब के बारे में करेंगे बात। 86th इंटरनेशनल सेंचुरी, और मुझे लगता है सिर्फ 14 गेम और खेलेगा ना ये लड़का, तो कुछ ना कुछ कमाल होने वाला है, यानी कि एक रिकॉर्ड टूट सकता है, और वो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। टू ऑल द विराट फैंस, मैं भी हूँ, इतना डाई हार्ड फैन नहीं हूँ बट हूँ, तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि 303 इनिंग्स में 15,000 ODI रन बनाने वाले फास्टेस्ट बैटर बन गए हैं, और 10 हंड्रेड्स दो टीम के अगेंस्ट बनाए हैं इन्होंने। मतलब 10 सेंचुरी इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट करी है पूरी, और 10 सेंचुरी ही इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट भी करी है। और आप सभी को बता दूं, अभी तक टोटल जो है, टोटल इन्होंने 13 सेंचुरीज मारी है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, और उसमें सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड भी इक्वल कर दिया है। इसके अलावा अगर हम लोग

ओडीआई हंड्रेड्स की बात करें, जो ओडीआई में सेंचुरी मारी है वो है टोटल 55, बाकी सारी की सारी हमारी किसी T20 में है, कोई हमारी टेस्ट मैच में है। और मैं अगर एक बात बोलूं, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है इन्होंने, हमारा जो IPL होता है ना उसमें भी इन्होंने 100 मारी है। तो मतलब ऑल टोटल तो 100 सेंचुरीज पार हो चुकी है, बट स्टिल हम लोग इसको एक बात करेंगे, 42 सेंचुरीज इन्होंने घर की मैदान पर, घरेलू मैदान पर मारे हैं, और 42 में से भी 28 जो हैं वो ODI के हैं और बाकी 14 जो हैं वो है टेस्ट क्रिकेट के। तो मैं जब रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्ड की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, और आप सभी को बता दूँ 60 लिस्ट ए की 100 हैं इनके नाम पे, जो कि सचिन तेंदुलकर के बराबरी कर चुके हैं। और मुझे लगता है अब सचिन तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड्स ये जल्दी ही तोड़ने वाले हैं। एचसी कब तोड़ेंगे, बट अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना जरूर चलेगा और करेंगे।

0: I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना जरूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

क्या आपको मालूम है, जब आप लोग कुछ भी चीज नहीं सोच पाते या फिर आपको किसी का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो आप जिस गूगल के पास जाते हो ना, उसको टोटल 28 साल हो गए हैं और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी जुड़ी है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सभी को बता दूं, सर्च इंजन्स हुआ करते थे, याहू, आल्टा विस्ता, हाँ सच में ऐसे करके सर्च इंजन्स भी हुआ करते थे। और उसके बाद एकदम से एक दो खिलाड़ी बोलूँगा मैंने, मैं दो लड़के थे, लैरी पेज एंड सर्जी जो भी बोल लो इन्हें, 1996 में इन्होंने ये एक काम शुरू किया। इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक बहुत बड़ी और भरोसेमंद वेबसाइट बनाएं जिसमें सर्च कर सके, सर्च इंजन हो एक तरह से वो। तो इन्होंने अपने कॉलेज में ही बैठ के ये काम शुरू कर दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये काम पढ़ते थे और उसी के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। और आप सबको बता दूँ, 1998 में इनको पहली फंडिंग मिल गई, जहाँ इन्हें $1,00,000 फंडिंग में मिल गए। सोचिए 1998 में $1,00,000 कितने ज़्यादा हुआ करते थे, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और फिर उसके बाद इन्होंने काम शुरू कर दिया। और आप सभी को बता दूं, गूगल का जो नाम है ना, वो है गूगल पे। गूगल का मतलब क्या होता है बताओ आपको? एक मैथमेटिकल टर्म होती है गूगल, और उसका नंबर होता है 100 के पीछे, मतलब 1 के पीछे 100 जीरोस। सोचिए उसका नाम होता है गूगल, इसलिए इन्होंने गूगल नाम रखा इसका। और अपने गैराज में स्टार्ट किया था इन्होंने, इन्होंने एक गैराज रेंट पे लिया कैलिफोर्निया में, और वहीं से इन्होंने काम शुरू किया। और पहला डूडल इन्होंने बनाया था 1998 में, जहां इन्होंने एक स्टिक से, मतलब वो स्टिक फिगर नहीं होती जो हम लोग पेंसिल से बनाते हैं, एक सिंगल सी डंडी ऊपर से हेड बना देते हैं उसका, वैसे करके इन्होंने डूडल बनाया था। और फिर उसके बाद गूगल जो नाम है असलियत में मिसस्पेल्ड है, मतलब ये सर्च इंजन चाहते थे GOGLE के नाम से, बट वो गलती से GOOGLE बन गया। और आज देखिए ये हिस्ट्री है, और अभी तक हायरिंग गोट माना जाता है ने, गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो मुझे लगता है गूगल के आगे कोई और सर्च इंजन शायद नहीं टिक पाएगा, बट गॉड नोज कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाने भी चलेंगे, और ये थी आज की टेक्नोलॉजी की बातें, करेंगे और भी ढेर सारी बातें मगर इस गाने

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो सारा होगा कोई।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

मौसम में ठंडक देखकर आप लोग खुश मत हो जाना और ये मत सोचना कि चलो सर्दियां आने वाली है फाइनली, क्योंकि अभी मौसम विभाग का कहना तो कुछ और ही है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। एयर क्वालिटी फरीदाबाद की बनी पड़ी है 120 के आसपास। और आज जो मौसम था बड़ा प्यारा सा, जो सुबह सुबह उठती ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, मिस करोगे इसे अगले आने वाले 10 दिनों में, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गर्मी बढ़ सकती है। मतलब 35-36 डिग्री आपको फिर से एक बार को देखने को मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे अभी कुछ नहीं पता क्योंकि अभी पहाड़ों पर भी ऐसा ही हो रहा, पहाड़ों पर कई कई जगहों पर बर्फबारी हो गई है, जिसकी वजह से प्लेन्स वाले एरिया यानी कि हम लोगों का एरिया जो है ना, इन्हें प्लेन्स एरिया कहते हैं, पहाड़ों को हिली एरिया कहते हैं, इतना तो आप सबको पता ही होगा। और वहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है चंबा में, और इसके अलावा बहुत सारे और भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के जहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से प्लेन्स एरिया में ठंडक बढ़ गई है। उड़ीसा में भी एक तूफान टकराया था, उसकी वजह से भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस पैदा हुई, जिसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली। सैटरडे की शाम को वो जो ड्रिजलिंग थी ना, वो तो मैं भुलाए नहीं भूलती, क्योंकि बहुत ही प्यारी वाली वो बारिश थी, और आज भी वैसे ही हम लोगों को दिन में देखने को मिली, तो मुझे लगता है ऐसी होनी चाहिए एक दो दिन। बट अभी मौसम विभाग का कहना है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट यू नो ना, वेदर किसी भी करवट बदल सकता है, कभी बदल सकता है। और अगर कल की बात करें तो कल ह्यूमिडिटी अच्छी वाली रहने वाली है।

कल बादल का आपको एक भी कतरा आसमान में नहीं दिखाई देगा, तो वेट कीजिए कल का। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसी ही ढेर सारी बातें और ढेर सारे गाने तो मैं लेकर आता ही रहूंगा। मैं हूं कौन, गौरव है आप सभी के साथ। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: लोट मैं भी सीटा थले पालिया पाइया ने तेरा ने जैकटा लाइटा वालिया नी तू भी सीख गई तोरा बिलकटा वालिया
1: मित्रा ने जैकटा लाइटा वालिया नी तू भी सीख गई तोरा

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

आज वर्ल्ड रेबीज डे है और साथ ही साथ वर्ल्ड रिवर्स डे भी है, और इन दोनों के बारे में मैं सच में बहुत ज्यादा बातें करना चाहता हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। अब आरजे गौरव है आप सभी के साथ, बट आज 28 सितंबर साल 2026 वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जा रहा है। क्यों? ताकि हमारा जो आने वाला कल है ना, वो रेबीज फ्री हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज, आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, अपना नहीं, अपने जो पालतू डॉगीज हैं या फिर पालतू पेट्स हैं, जो भी आपके पास पेट हैं, उनका वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। और हो सके तो जितने भी आपकी गली में अगर स्ट्रे एनिमल्स हैं, कम्युनिटी एनिमल्स जिन्हें कहते हैं, तो उनका भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि इससे ही हमारा आने वाला कल रेबीज फ्री हो सकता है। और लोगों का भी बचाव कीजिए, और साथ ही साथ एनिमल्स की केयर करनी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को एक सेफ कम्युनिटी चाहिए। तो एनिमल्स की भी हेल्प ज़रूर करनी पड़ेगी, एनिमल की केयर करनी पड़ेगी। जो स्ट्रे एनिमल्स हैं हम लोगों के घर के आसपास, उन लोगों की केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि रेबीज हम सब जानते हैं एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। भगवान ना करे किसी को हो, बट मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी जंगली जानवर काटता है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाइएगा, कभी भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि रेबीज का एक छोटा सा वायरस भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। चलिए अभी इसके साथ साथ बढ़ते हैं आगे वर्ल्ड रिवर्स डे पर। तो हेल्दी रिवर्स ब्राइटर टुमारो, क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है, बचपन से हम सुनते आए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे देश में एक ऐसी नदी बहती है जिसे पूरी दुनिया जानती है, दुनिया कहती है गेंजेस, बट हम लोग कहते हैं गंगा माँ। और माँ गंगा तो हम लोग कहते हैं, बट काफ़ी बार मैंने देखा है, जब मैं ऋषिकेश गया, जब मैं हरिद्वार गया, तो कुछ लोग वहीं पर कपड़े धो रहे थे, कुछ लोग वहीं पर कुल्ला कर रहे थे, तो उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे बोला, वो बहुत बुज़ुर्ग थे मेरे से, मतलब मेरे से क्या, वो सच में ही बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे। मैंने उनसे जब पूछा कि अंकल आपने ऐसा क्यों किया, कहते सब करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। मैंने कहा अंकल सब करते हैं और सब गलत करते हैं, तो आप भी गलत करेंगे क्या? और ये सब बातें जब मैंने बोली, फिर उसके बाद वो अंकल थोड़ा सा एक्शन मोड में आ गए, और फिर उसके बाद मुझसे लड़ने को तैयार हो गए थे। मैंने कहा अंकल देखो ऐसा है, मुझे लड़ने का तो कोई शौक है नहीं, आप अपनी जगह सही लग रहे हैं आपको, अगर तो ठीक है, आप सही हैं और हम गलत हैं। और इसी के साथ साथ मैं वहाँ से निकल गया। तो निकलने की बात जब आई है, तो फिर मैं इधर से भी निकलता हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बस गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। रेडियो महारानी सुनते जाइए, गाने भी चलेंगे, बातें भी होती रहेंगी। मैं हूँ आरजे गौरव आप सभी के साथ। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर वालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहां सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आपको पता है कि इंडिया के भी काफी सारे ऐसे गाने हैं जो विदेश में यूज किए गए हैं, और जरूरी नहीं कि हमेशा इंडियन सिंगर्स ही विदेशी गानों को इंडिया तक लेकर आए, नहीं, इंडिया के गाने भी भारत तक पहुंचे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव आपके साथ एंड बात करते हैं म्यूजिक डिकोड की। और आज म्यूजिक डिकोड में मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसे गाने बताऊं आप लोगों को जो इंडिया से भारत तक गए हैं। एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी मॉलिन रोग, ये साल 2001 में आई थी। इसमें ना चाइना गेट का एक गाना यूज़ किया गया था, छम्मा छम्मा, याद है ना वो गाना? तो वो गाना यूज़ किया गया था इस फिल्म के अंदर, और निकोल किडमैन ने इस गाने पर डांस भी किया था इस गाने में। और इसके अलावा एक फिल्म है जो बहुत ही कॉमेडी है, और उस फिल्म का नाम है यू डोंट मेस विद द जोहान, साल 2008 में एक गाना यूज़ किया गया था। उस गाने का नाम है जिमी जिमी जिमी आजा आजा आजा। और अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल गाना यूज़ किया गया था, तो ऐसा नहीं है, एक ब्रिटिश सिंगर है MIA, उन्होंने ये गाना रीमिक्स किया था, कवर बनाया था ये सोच लो। और इसके अलावा साल 2000 भी नहीं बोलूँगा, उससे भी बहुत पहले

गाना बताऊं तो आपको, कोई फेमस बताऊं? कहना ही क्या, याद है आपको, फिल्म बॉम्बे से इसको यूज़ किया गया था साल 2005 में, डोंट फंक विद माई हार्ट, ब्लैक आइड पीस। तो आप सभी को बता दूं, एक अमेरिकन बैंड है और इन्होंने ग्रैमी विनिंग गाना, मतलब जो बनाया था वो, कहना ही क्या गाने से यूज़ किया गया था। तो सोचो, इंडिया का गाना ग्रैमी जिता सकता है किसी को, कुछ भी हो सकता है फिर तो, है ना। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ जो कि इन सब गानों से हटकर है, थोड़ा तड़कता भड़कता सा, इंद्रचाल और करण औजला की आवाज़ में, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: कुछ कुछ कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एमडी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स एंड यस, आई आल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माय एडवाइस टुडे कम्स फॉर विमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सच सच बताना कि आप लोगों को नहीं लग रहा आजकल सुबह और शाम को थोड़ा ठंडक ठंडक सी हो रही है, हर जगह मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना सा हो गया है। और आज का मौसम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है सुबह से ही, और जो दिन में ड्रिजलिंग हुई ना उससे तो मज़ा सा ही आ गया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड ये जो आज का मौसम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ आप सभी के साथ बोलना चाहता हूँ कि इस हवा में फेस्टिविटीज़ की महक है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि वो मौसम फिर से आ गया जब कंबल तो नहीं बोलूँगा, अभी चद्दर बोलूँगा, चद्दर से एक पैर बाहर निकालते हैं एक पैर अंदर रखते हैं और मौसम और भी ज़्यादा औसम होने वाला है कुछ ही दिन में। वेदर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट आपको नहीं लगता डांडिया और गरबा की रातें बहुत ही नज़दीक आ रही है? और आप सभी को बता दूं, रेडियो महारानी भी बहुत सारी जगह पर एज अ पार्टनर, एज अ रेडियो पार्टनर बोलूँगा, या फिर मैं बोलूँ एज एन ऑफिशियल रेडियो पार्टनर, डांडिया और गरबा नाइट्स में पहुँचने वाला है। तो आप सब भी अगर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कहीं पर तो आप हम तक रीच आउट कीजिए। नंबर है हमारा 9654896896। हम लोग मिलकर ना ये डांडिया नाइट और गरबा नाइट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना देंगे। मतलब आप लोग अपना इवेंट कराइए, हम लोग आके अपना काम करेंगे। और इसी के साथ साथ बता दूं आपको कि देखो फेस्टिविटीज़ की बात आई गई है तो मार्केट में भी दुकानों में रौनक लगनी शुरू हो गई है। कुछ लोग पटाखे लेने जा चुके हैं ऑलरेडी, कुछ लोग आगे जा रहे हैं, कुछ लोग आने वाले हफ्ते में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में। और आप लोगों की कितनी तैयारी है इस फेस्टिव सीज़न के लिए बताइएगा ज़रूर, हमारे इंस्टा हैंडल पर आकर रेडियो महारानी के नाम से बहुत ईजिली मिल जाएंगे। मगर इसी के साथ साथ आप सभी के लिए गाना भी चलाऊँगा। सुनिए गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव।

0: जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने सपने में कभी ऐसा देखा है कि आप एक बहुत बड़ा कैश प्राइज जीत चुके हैं? बहुत बड़े से मेरा मतलब है कि 100-200 रुपए नहीं, 1000-2000 रुपए भी नहीं, 100-200 करोड़ रुपए आप लोग जीत चुके हैं। आरजे गौरव है आप सभी के साथ और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का, और हम लोग सपनों को डीकोड कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ मेरे को ये सपना है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा कैश प्राइस जीत चुका हूँ और 200-300 करोड़ रुपए हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा। और दूसरा ऑप्शन भी था मेरे पास और वो था कुछ और, उसको खैर इधर डिस्कस नहीं करते हैं। बट सपने में अगर आप लोग कभी अचानक से कुछ जीते हैं, आपको पैसे मिले हैं सपने के अंदर, तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। हो सकता है कि आपको अचानक धन लाभ होने वाला हो, कहीं पैसा फंसा है आपका वो आ सकता है, या फिर आपने कहीं पैसे लगाए हैं वो चीज़ बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो बढ़ सकती है, और इसका मतलब है कि सक्सेस इज नियर। आपके जितने भी रुके हुए काम है ना, वो सारे पूरे होने वाले हैं। करियर या फिर बिजनेस में एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, और हो सकता है आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। आपका जो वर्क प्लेस है या फिर जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसमें आपका रुतबा और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। अब इसके अलावा देखो, सपने तो बहुत कुछ बताते हैं, बट सपनों के अंदर एक साइकोलॉजिकल मीनिंग भी होता है। हो सकता है कि आपके अंदर हाई कॉन्फिडेंस है। अब पैसा हमेशा पावर और सेल्फ वर्थ को दिखाता है, उसका सिंबल है। तो अगर आपने ऐसा कुछ सपना देखा है तो मतलब सिंपल सा है कि आप खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, और फाइनेंशियल स्ट्रेस से आपको राहत मिल चुकी है, और इसी के साथ साथ अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने को पूरी तरह से तैयार है, और आप भी पूरी तरह से तैयार बैठे हो कि कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो मैं उनको ग्रैब क्या, मैं उनको क्रैक भी कर डालूंगा। और एक छोटी सी एडवाइस दूंगा, देखो ये सपने बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल लाइफ में लॉटरी या फिर गैम्बलिंग में पैसा लगाने शुरू कर दो, ऐसा मत करना प्लीज़। और इससे अच्छा साइन मानो, और सिंपल सी बात है कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, कर्म करते जाओ, और आप देखना एक दिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक गाने चलते रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं हूँ गौरव आपके साथ, और आप सुन रहे प्रोग्राम

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: क्या आप लोग भी उनमें से हैं जो जिम जाकर सिर्फ और सिर्फ वेट उठाने पर फोकस करते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपने फॉर्म को सही करते हैं उसके बाद वेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ, रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे आप सब? वक्त हो चुका है जिम ब्रो का, गौरव AKA जिम ब्रो, ये भी कह सकते हो आप लोगों को। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ एक बार कि मैं कोई सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही मैं आपको कोई ऐसी टिप दूंगा जिससे आपको नुकसान होगा, बट मैं आप सभी से कुछ कुछ बातें शेयर करूंगा जिम के बारे में। आप लोगों ने जिम में ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वेट बढ़ाने पर फोकस करते हैं, उनका फॉर्म बिल्कुल खराब हो जाता है। तो काफी बार ऐसा होता है उनको देखने के बाद ना हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये वेट तो हम भी उठा लेंगे, क्या चीज है इसमें, इट्स पीनट्स। तो आप अगर ऐसी कोशिश करते हैं और अगर आपका फॉर्म खराब होता है तो इसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और काफी बार मैंने ये देखा है लोगों को कि वो साथ में ग्रुप में वर्कआउट करते हैं चार लोग, और देखो चारों की एनर्जी सेम नहीं हो सकती और चारों का फॉर्म सिमिलर नहीं हो सकता। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इसमें से तीन लोग 12-12 रेपिटेशन कर रहे हैं तो चौथे वाले के ऊपर अल्टीमेटली अपने आप प्रेशर बन जाता है कि हाँ मुझे भी 12 रेपिटेशन करने ही करने हैं, और भले ही उसके फिर वो 8 रेपिटेशन के बाद टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो बट पीछे वाले सपोर्ट कर रहे हैं, अरे चलो चलो हो जाएगा, बट उसमें इंजरी हो जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यही चीज जो है वो मैं समझाना चाहता हूँ सभी लोगों को। बीइंग अ जिम ब्रो आप सभी का मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वो वेट रहिए जिसमें आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट हो, रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल करेक्ट हो। और अगर आपके दोस्त आपको बस पुश करते हैं कि चल चल उठा उठ जाएगा, कोई नहीं वेट तो उठा, पहले वेट उठा लेगा फॉर्म तो बाद में अपने आप आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप पहले फॉर्म ठीक कीजिए उसके बाद आप वेट को बढ़ाने पे फोकस कीजिए, और ग्रेजुअल ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, और एक दिन में वेट नहीं बढ़ेगा मगर एक दिन ज़रूर बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चलते रहेंगे। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

आज का मौसम बहुत बड़ा ही ज़्यादा औसम, क्योंकि मज़ा सही आ गया आज के मौसम से। तो लाइक लग ही नहीं रहा कि सितंबर चल रहा है, ऐसा लग रहा है अक्टूबर का एंड होने वाला है। खूब सारा खुशबू है आसमान में। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? ये सवाल आप सोच रहे हो कि इतनी रात को क्यों पूछ रहा है। रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, मैं जब आता हूँ तब आपसे ये सवाल पूछता हूँ। और अभी हो गया ऑलमोस्ट मेरे जाने का टाइम, 9 बजने में मात्र 9 मिनट बाकी है, और आपकी घड़ी भी यही दिखा रही होगी, मेरी घड़ी भी यही दिखा रही है। तो इसी के साथ साथ मेरा जाने का वक्त हो गया, पर जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जितनी भी अफवाहें फैल रही है ना, उन सब पर बिलीव मत कीजिए। मैं आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, सोशल मीडिया पर आप जो भी चीज़ देखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। तो आप लोग एक काम किया कीजिए, जो भी चीज़ आपके पास आती है उसको आप एक बार वेरीफाई कीजिए, जेमिनाई से वेरीफाई कीजिए, गूगल से वेरीफाई कीजिए, चाहे GPT से वेरीफाई कीजिए, बट वेरीफाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है ऑनलाइन, वो हम लोग बिना सोचे समझे उसको सच मान लेते हैं। तो इसमें किसी का कुछ ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, आपको उस जेमिनाई खोलना है, चाइल्ड वाला बटन दबाना। आप गाड़ी चलाते चलाते ये चीज़ें पूछ सकते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, गाड़ी साइड में रोकिए, जेमिनाई ऑन कीजिए और फिर उसको बोलो कि हाँ भाई जेमिनाई बता दे मुझे ये चीज़ें, वो सब बता देगा आपको। तो इसके बारे में ज़रा रिसर्च किया कीजिए, मतलब इसके ही नहीं, जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और फिर उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही महान हस्ती ने कहा है कि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा, ऐसे मीम्स चलते ना। तो चलिए इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेश के बाद, या प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने लेकर। एंड अभी मैं एक प्यारा सा गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए,

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ. आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना. अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था. लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज. और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी. उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है. यानी बिल्कुल हमारी तरह आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं. एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल. मैसेज पढ़ लिया जाता है, जवाब नहीं आता है. किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती. और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है. उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले. अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना. हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता. कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट. और दिल बहुत कामली कहता है रियली. फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है. और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स आ गई हैं, लेकिन इंतजार अभी भी वही है. मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM. सेगमेंट है इश्क शायराना और अब है दिल को थोड़ा और फराज में बनाने का वक्त. एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड क्योंकि कहानी अभी बाकी है.

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिंस एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारी चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर

बाजियां। इसी खूबसूरत से गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ। इश्क वाली गीत बात चल रही है दाग दहलवी साहब के बारे में। और कभी कभी ना रिलेशनशिप में कोई बड़ी फाइट नहीं होती है, ना कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप होता है, बस एफर्ट्स कम होने लगते हैं। पहले जो इंसान खुद मैसेज करता था, अब आपके मैसेज का रिप्लाई भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करता है। पहले जैसे आपकी छोटी छोटी बातें याद रहती थी, अब उसे आपकी बड़ी बड़ी बातें भी याद नहीं रहती हैं। और आप पूछते भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं जवाब वो ना मिल जाए जिसका डर आपको पहले से है। Have you ever been there? जहां रिश्ता टेक्निकली खत्म नहीं हुआ, लेकिन दिल को लगने लगा कुछ तो खत्म हो गया है। दाग दहलवी की यही तो खूबसूरती है, उन्होंने इश्क के सिर्फ खूबसूरत हिस्से नहीं लिखे, बल्कि उस प्यार को भी लिखा है जिसमें शक है, शिकायत है, उम्मीद है और टूटने का डर भी है। उनकी गजलों में प्यार है, जिंदगी बहुत सहज है, प्लेफुल है, लेकिन इमोशंस जो है वो दिखाई देते हैं। और इसी गजल में एक जगह वो कहते हैं, वफा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है, ये कलाम किसका था? सोचिए, प्रॉमिसेस याद है वो कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, याद है वो कुछ भी हो जाए हम साथ हैं, याद है। क्योंकि रिलेशनशिप में कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सामने वाला बदल गया है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसके पुराने वर्जन को छोड़ नहीं पाते हैं। हम आज के इंसान से बात कर रहे होते हैं, लेकिन उम्मीद कल वाले इंसान से लगाए हुए बैठे होते हैं। और शायद यही वजह है कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं। लोग चले जाते हैं, लेकिन उनके कहे हुए शब्द हमारे अंदर रहते हैं।

आते हैं। कभी किसी का एक मैं होना सालों तक याद रहता है, और कभी किसी का एक अब पहले जैसा कुछ नहीं है पूरी कहानी बदल देता है। तो अगर आज रात आपके दिल में कोई भी ऐसी अनफिनिश्ड कॉन्वर्जेशन है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है या बस मन हल्का करना है, यू कैन टॉक टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर RJGeet01 पर DM कर सकते हैं, आप रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। नाम बताना जरूरी नहीं है, कभी कभी बस अपने दिल की बात बोल देना ही इनफ होता है, बिकॉज सम फीलिंग डोंट नीड अ सोल्यूशन, दे जस्ट नीड अ लिसनर। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रही हैं इश्क बाजियां। स्टे विद मी, रात अभी बाकी है और डाक के अल्फाज में छुपी और कुछ मोहब्बत की बातें बाकी है।

सिनेमा का कैप्सूल। अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्ट्रेस स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी। मैं आपके साथ हूँ इश्क़वाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुड बाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा। फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस, आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है। किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो। वही फराज का मैजिक है, वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है, कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं। तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। तो आज की रात हमने की फराज साहब के नाम। अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की

मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजिया और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल रखो।

0: 89.6 रेडियो महारानी पर बस एक छोटा सा ब्रेक है।
1: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766-22-0036।

में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत

0: हैरान कर देने वाला हिस्सा, क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहां शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।
1: गुमसुम गुमसुम गुप चुप, गुमसुम गुप चुप।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत ही प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 9.6 एफएम। कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चालक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। मिलूंगी फिर एक और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यार को वक्त दीजिए, अपनों की कद्र कीजिए, और याद रखिए, सही इंसान मिल जाना किस्मत होती है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना वो आपकी चॉइस होती है। लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ, फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहां ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहां हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से

वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14 फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलेसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसकी मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

वाणी। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वक्ता देवी चित्रलेखा जी के विचार।
1: नारद जी आए हैं, देवी लक्ष्मी आई है, बाबा भोलेनाथ भी आए हैं। बाबा भोलेनाथ जी पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन अब इनको वहां जगह कौन देगा जाने के लिए? इतनी भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता कौन वीआईपी है कौन नहीं है, सबको ही लगता हम ही आगे बढ़े। दर्शन नहीं करने दिया बाबा जी ने, सोचा अब तो दर्शन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं दोबारा दर्शन करने आएंगे। तो बाबा भोलेनाथ दोबारा दर्शन करने आए, कब? जब भगवान 4 दिन के थे। बड़ा अद्भुत वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा। आज ठाकुर जी 4 दिन के हैं, 4 दिन का लाला है, बड़ा सुंदर रूप है। भोलेनाथ जी पहुंच गए, आकर के मैया के द्वार पर सबसे पहले कैलाश से निकले हैं बाबा भोलेनाथ।